आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अभी बज गई पास सुबह के 6। आज 6 बजते ही राउर रेडियो दोस्त दीपाली हाजिर पड़ी वो प्रोग्राम लेके जोन हाँ आपन दे आपन देखभाल। तो सबसे पहले स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ये प्रोग्राम में हम बताएनी ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चलिए बिना देरी के लिए शुभ आरंभ के लिए अपना कार्यक्रम के, जिसमें हम बताएं सबसे पहले असरकारी कुछ घरेलू उपचार। इसे जोड़ के दर्द में एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 8 से 10 बार पी, इसे जोड़ में आराम मिले। जोड़ पर नीम के तेल के हल्का मालिश करे पर आराम मिलेला। लौकी के गुद्दा तलवा पर मले से ओकर जलन शांत होला। शरीर में कोनो भी भाग या हाथ पैर में जलन होके पर तरबूज के छिलका के सफेद भाग में कपूर और चंदन मिला के लेप करे से जलन शांत होला। सरसों के तेल में बराबर के पानी मिला के फेटली व घमौरी पर लगाई, इसे शीघ्र आराम मिली। सिर दर्द होके पर गुनगुना पानी में अदरक व नींबू के रस व थोड़ा सा नमक मिला के पिए से आराम मिलेला। बच्चा के काली खांसी ठीक ना होके पर बांस के एक टुकड़ा के जला के ओ भस्म के शहद में मिला के 3-4 बार चाटे से बच्चा की खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाई। ई तरह असरकारी कुछ घरेलू नुस्खा। अब चलिए हम बता दें कुछ लाभकारी घरेलू नुस्खा। जख्म पर पड़ल कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। दाढ़ दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द के जगह रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी सेवन कराई। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। आधा छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओकर पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। अजवाइन के कुछ देर चबावे के बाद एक कप गर्म पानी पी लेवे से पेट दर्द से छुटकारा मिल जाला। नींद ना आवे के बीमारी में ज्यादा मात्रा में दही खाई या एक ग्लास पानी में दो छोटा चम्मच शहद मिला के पियल लाभप्रद होला। दाढ़ में दर्द होके तल लौंग के तेल लगावे से दर्द समाप्त होला। तेज सिर दर्द होके पर पिपरमेंट गर्म करके सिर पर लगावे से आराम मिलेला। हिचकी आवे पर तुलसी व शक्कर खा के पानी पिए से लाभ होला। मुंह में छाला होके पर नारियल खाए से छाला शीघ्र ठीक हो जाला। भूख ना लागत होके तसाफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में दो बार एक एक चम्मच खाएं। मसूड़ा फूल जाए पर सरसों के तेल में नमक मिला के आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा पर मसाज करे से तकलीफ खत्म हो जाला। बिना दूध व शक्कर के अदरक वाला चाय पिए से पेट दर्द ठीक होला। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात पानी कुछ आसान उपाय सेहत बनावे खातिर। खान पान के गड़बड़ आदत, कसरत ना कैल और तनाव के अलावा धूम्रपान एवं शराब पिए से रक्तचाप बढ़ल, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के खतरा युवा अवस्था में ही बढ़ रहल बा। जैसे दिल के दौरा पड़े के आशंका पैदा होला, रवा जीवन शैली में बदलाव लाके ये जोखिम के कम कर सकता नहीं। जैसे में अर्जुन के पेड़ के छाल भी धमनी में अवरोध दूर करे और रक्तचाप के नियंत्रित करे में काफी उपयोगी सिद्ध भइल बा। छाल के दो तरह से लिहल जाला। एकर 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट ली या 10 ग्राम के 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में खाली पेट रोज सुबह ली। स्वाद खातिर मिश्री या खंड मिलावल जा सकेला। ये मिक्सचर में शहद ना मिलाई, काहे कि इसमें सैचुरेटेड फैट होला। और एक अन्य रसायन दिल के कमजोर करेला। अर्जुन के छाल से गर्मी निकलेला जबकि शक्कर से ठंडक आवेला। ये तरह दोनों के कोनो मेल नहीं खे। ये प्राकृतिक उपचार के अलावा सेहतमंद जीवन जिए खातिर नियमित परहेज से रहल, नियमित शारीरिक व्यायाम कइल और डॉक्टर के नियम पूर्वक जांच करावे के भी सलाह भी दिहल जाला। हमेशा याद रखें कि दिल के दौरा पड़ल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होला। सीना में दर्द के शिकायत के अनदेखा ना करी और ना ही खुद से दवा उपचार ली, बल्कि हृदय के उपचार कोनो विशेषज्ञ के देखरेख में होके के चाहिए। तो दोस्त लोग चलिए अब जानल जाओ खुजली के घरेलू इलाज। त्वचा में खुजली चले, दाद हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए पर खुजला खुजला के हाल बेहाल हो जाला और ये लोग के सामने शर्म भी आवेला। यदि रुआ कोनो क्रीम या दवा लगावे के नहीं की चाहत या लगावे पर भी आराम नहीं के होत तो घर पर ही ई चर्म रोग नाशक तेल बना के लगाई, इसे ई व्याधि दूर हो जाए। जैसे में तेल बनावे के विधि ई है कि नीम के छाल, चिरैता, हल्दी, लाल चंदन, हरड़, बहेड़ा, आंवला और अडूसा के पत्ता सबके समान मात्रा में ली। तिल्ली के तेल आवश्यक मात्रा में ये सब आठों द्रव के 5-6 घंटा तक पानी में भिंगा के निकाल ली और पीस के कल्क बना ली। पीठी से 4 गुना मात्रा में तिल के तेल और तिल से 4 गुना मात्रा में पानी लेके मिला के एगो बड़ा बर्तन में डाल दी और एकरा के मंद आंच पर इतना देर तक उबाली कि पानी जल जाए, सिर्फ तेल बचे। ये तेल के शीशी में भर के रख ली और ये जहाँ भी खुजली चलत हो के, दाद हो के, वहाँ ये पूरा शरीर पर ये तेल के मालिश करी। ये तेल चमत्कारी प्रभाव करेला, लाभ हो के तक ये मालिश जारी रखी। मालिश स्नान से पहले या सोते समय करी और एकर चमत्कार देखी। दोस्त लोग अब उस समय आ गई बा जिमे दीपाली ली है रोसी जाए के अनुमति। रखी रहो आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल, आजमाई ई सब अचूक नुस्खा के। आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमजेड पर।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
1: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: बात बड़ी अजीब सी लगती है पर है तो है। हिडिंबा राक्षसी थी पर उसने अपने प्रेम से कुंती का दिल जीत लिया था। मैंने हिडिंबा को प्रेम में बदलते हुए देखा है। मैं वो आंख हूं जो उसको भी देख सकता है जो मन में घटता है। मैं आकाश हूं। हिडिंबा के प्रेम के सामने कुंती को झुकना ही पड़ा। इसीलिए कुंती ने तय किया कि जैसी कि हिडिंबा की इच्छा थी वो एक पुत्र होने तक भीम के साथ रहेगी। भीम का संग पाकर हिडिंबा का मन किसी पंछी की तरह उड़ान भरने लगा।
11: मैं जब से जन्मी हूं ना भीमसेन, हर दिन इसी सरोवर में स्नान करने आती हूँ। अरे अरे रुको, आगे सरोवर बहुत गहरा है। अरे और आगे मत जाना।
12: मैं पानी से नहीं डरता हिडिंबा, पर
11: अच्छा डर नहीं लगता तो चलो आओ आओ आगे चलते हैं।
12: अरे अरे अरे छोड़ो मुझे। सुनो तो देखो, मुझे माँ के पास जाना है हिडिंबा, वहाँ सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
11: शरीर से माँ भली हो गए हो पर मन से अभी भी बच्चे ही हो। बच्चे ही ऐसे बार बार माँ के पास भागते रहते हैं।
12: हाँ हाँ बच्चा हूँ। चलो हटो, छोड़ो मुझे, जाने दो।
11: तो इस छोटे से बच्चे को एक और डुबकी लगानी पड़ेगी।
13: माँ, आपने हिडिंबा को जैसी छूट दे रखी है ना, अब तो वो आपके बेटे को अपने से कभी दूर जाने ही नहीं देगी।
14: हाँ माँ, सांझ हुई नहीं कि बेताल जैसी भैया भीम के कंधे पर झूलने लगती है।
15: माता, ये प्रेम बड़ा निर्मम होता है, कहीं भैया भीम सदा के लिए वन में ही ना बस जाएं।
16: हटो, मेरा भीम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके मन में हस्तिनापुर ही घूमता रहता है। हिडिंबा नहीं मिलती तो वो अभी भी हस्तिनापुर जाने का हट कर रहा होता।
14: तो आप क्या चाहती हैं माँ, हम सभी हस्तिनापुर को भूल जाएं? जटाएं बढ़ाकर ऐसे ही मृगछाला धारण करके वनों में भटकते रहें?
16: अरे अर्जुन, तुम तो भीम के जैसे ही क्रोधित हो रहे हो। मैं माँ हूँ, अपने पुत्रों को वन में भटकते नहीं देख सकती। मुझे युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना है। मेरे जीवन का अब केवल यही उद्देश्य है। एक बार तुम सबको अपने अधिकार मिल जाएं, तो मैं इस मोह माया से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं।
14: माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो हंसी कर रहा था।
13: पर माँ, हमारे पास कोई योजना तो होनी चाहिए कि हमें यहाँ वन में कब तक रुकना है।
12: हम यहाँ ठहरने के लिए नहीं आए हैं भैया।
13: अरे भीम, तुम कब आए?
12: मैं गया ही कहाँ था। मैं कहीं जाता भी हूँ तो मेरा मन यहीं रहता है। आप सबने मुझे हिडिंबा के बंधन में बांध दिया, पर मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ।
17: पर यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ?
15: हम जहाँ भी जाएं, दुर्योधन को हमारे जीवित होने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए।
12: चुप करो, मैं किसी के डर से ऐसे छिप कर नहीं रह सकता। हम लौटेंगे और जल्द ही लौटेंगे।
16: तुम बात बात पर इतना क्रोधित क्यों हो जाते हो भीम? हम भी तो यही सोच रहे हैं ना।
12: मैं खोल नहीं रहा माँ, पर यह सच्चाई है कि हम अपने प्राण बचाकर छिपते फिर रहे हैं, जबकि हमें हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन से अपना राज्य वापस लेना चाहिए।
14: हाँ भैया, पर कब?
12: मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ अर्जुन।
15: फिर तो हमें वारणावत से सीधे हस्तिनापुर ही चलना चाहिए था ना।
13: इस विवाद से कोई लाभ नहीं। सच ये है कि हम जब तक अपनी सेना नहीं बना लेते तब तक हस्तिनापुर नहीं लौट सकते। हमें हमारा अधिकार चाहिए तो छीन कर लेना होगा।
16: तुम ठीक कह रहे हो युधिष्ठिर, हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर मुझे बहुत खुशी है कि इतना सब होने के बाद भी तुम पांचों भाई एक हो और मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार हो। तो धन्य हो गई पुत्र, तुम सबको पाकर।
5: खास बात यह है कि पांडव तब तक एक थे, मतलब बाकी भाइयों की युधिष्ठिर से असहमति तो पहले भी होती थी, पर एक सिचुएशन पॉइंट होता है ना, तो वो जुए वाले दिन आ गया था, बस तभी से पांडवों में बिखराव आ गया।
18: कौरवों के साथ जुआ खेलकर वनवास प्राप्त होने के बाद ये जो बिखराव तुम भाइयों के बीच निर्माण हुआ है, वो माता कुंती के संघर्षों को व्यर्थ कर सकता है। याद रहे, चाहे वर्णवत की आग हो या हिडिंबा के साथ न्याय हो, माता कुंती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी समझदारी से स्थिति संभाली और तुम भाइयों की एकता को बिखरने नहीं दिया। अब अधिकार की उसी लड़ाई को तुम्हें आगे बढ़ाना है। मैंने तुम्हें इस कथा की याद इसलिए दिलाई कि कहीं तुम अपनी माता के संघर्षों को भूल ना जाओ। वो इतने वर्ष तुम सबको जोड़ने में लगी रही। उन्हें पता था कि तुम भ्राताओं की एकता ही तुम्हें कौरवों पर विजय दिलाएगी।
13: हमारी एकता में कोई कमी नहीं है ऋषिवर मैत्रेय, हमने अपने भ्राताओं की भावनाओं का सदा ध्यान रखा है।
12: ये सच नहीं है बड़े भैया, यदि आप हमारी भावनाओं का थोड़ा भी ध्यान रखते तो आज हमें यह वनवास नहीं भोगना पड़ता।
16: मुझे बीच में तो नहीं बोलना चाहिए ऋषिवर, पर भीम सच कह रहे हैं।
18: मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूँ पांचाली, पर सच और झूठ का विश्लेषण तुम सबको मिलकर करना है। अभी मुझे जो कहना है वो कह लेने दो। मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, वहां मैंने जो देखा उसे देखकर इतना ही कहूंगा कि यदि भविष्य में तुम कुछ पा सकोगे तो केवल एक रहकर। दुर्योधन तुम्हें कभी नहीं हरा सकता, यदि तुम्हें कोई चीज हरा सकती है तो वो है तुम्हारा बिखराव।
13: बिखराव?
18: तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर, तुम्हारा मन शांत और सात्विक है, शत्रुओं को क्षमा करना तुम्हारा धर्म है।
12: और इनके इसी धर्म ने हमारी ये दुर्दशा की है। इनके इसी धर्म का पालन करने में पांचाली का भरी सभा में अपमान हुआ।
16: मुझे समझ नहीं आता ऋषिवर, ये कौन सा धर्म है इनका? अधर्म का उत्तर धर्म से, अपमान का उत्तर सम्मान से, क्रूरता का उत्तर विनम्रता से।
18: मैं इसी मतभेद की बात कर रहा था धर्मराज। जब आप सबके विचार इतने भिन्न हैं, तो आप सब भविष्य में अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इसीलिए मैं आप सबको देवी कुंती का भय और संकल्प बताना चाहता हूं। उनका ये भय मुझे तब पता चला जब मैं हस्तिनापुर में उनसे मिलने गया।
16: महाराज पांडु संन्यास लेना चाहते थे, इसीलिए वो हस्तिनापुर छोड़कर चले गए थे, और अब पुत्र युधिष्ठिर वो भी उसी मार्ग पर जा रहा है। ऋषिवर, मुझे भय है कि कहीं युधिष्ठिर सत्ता अधिकार और अपनी प्रजा को भूलकर शांति की खोज में ना निकल जाए। जो व्यक्ति अपनी धरती को भूल सकता है, वो अपनी माँ को भी भुला सकता है। मुझे भय है कि कहीं वो मुझे भी ना भुला दे, पर मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मेरे पुत्रों को, अपनी माँ को अधर्मी दुर्योधन के बंधन से मुक्त कराना होगा, उन्हें इस अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही होगा।
18: देवी कुंती के संकल्प में हस्तिनापुर का हित है, इसीलिए तुम सबको मिलजुल कर अपनी माता का संकल्प पूरा करना होगा। आर्यवर्त के सारे ऋषि महर्षि आप पांचों के साथ हैं, आवश्यकता होने पर वो भी शस्त्र उठाने में संकोच नहीं करेंगे। क्योंकि अधर्म के विरुद्ध लड़ने से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। आप सब मेरे इस परामर्श पर गंभीरता से विचार करें और यदि कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करें। अब चलता हूं। ईश्वर आप पांचों को एक रखे।
14: क्या हुआ बड़े भैया, आपकी आंखों में आंसू? महर्षि ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही।
13: मां की याद आ गई अर्जुन, उनका सोचना सही है।
17: हाँ भैया, इतने संघर्षों में भी उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। वो हर क्षण हमारे अधिकारों के लिए लड़ती रही। इसलिए अब हमारा धर्म है कि चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए, हमें उनका संकल्प पूरा करना होगा।
13: समझ रहा हूँ नकुल, मुझे दुख केवल ये है कि पांचाली मेरी भावनाएं नहीं समझ रही है। ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे बताओ भीम, ऐसी कौन सी भूल कर दी मैंने? यदि तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे तो क्या रह जाऊंगा मैं?
12: इस बारे में मुझे कुछ मत पूछिए भैया, आप सीधे पांचाली से ही बात कीजिए।
19: मैं कुछ भी कहूंगी तो उसे ज्येष्ठ अपने आंसुओं में धोने का प्रयास करेंगे। हमें नीति और धर्म में उलझाएंगे।
14: पर इस भय से तुम सच को तो नहीं छुपा सकती पांचाली। अग्रज को सम्मान देना हमारा संस्कार है, पर अपनी भावनाओं को मारकर चुप बैठ जाना उससे भी बड़ा अपराध है।
19: क्या अपराध है और क्या नहीं, क्या ये सब हमें हस्तिनापुर में नहीं सोचना चाहिए था? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि द्युत सभा में भीम के अलावा बाकी सब चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना अपमान सहने के बाद भी आपके अग्रज फिर से द्युत खेलने क्यों पहुँच गए थे? क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्वयं दास बन चुके आपके अग्रज ने मुझे दाव पर कैसे लगाया? किसी के पास है कोई उत्तर? प्रश्न तो बहुत सारे हैं पार्थ, पर उत्तर एक भी नहीं। और जब तक मुझे मेरे मन में उठते इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तक मैं चुप ही रहूंगी। मुझे ऐसे दुर्बल मनुष्य से कोई बात ही नहीं करनी जिसके पास मेरे हर एक प्रश्न के उत्तर में केवल आंसू हो।
12: तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे पांचाली, क्रोधित मैं भी हूं, पर बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे बड़े भैया ने कुछ भी किया हो, पर अभी हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे विचार भले ही अलग हों, पर लक्ष्य तो एक ही है ना।
13: जब हम आपस में बात भी नहीं कर सकते तो हम चाहे जो सोच लें अपना लक्ष्य नहीं पा सकते।
19: भीम, अपने ज्येष्ठ से कहिए कि मैं बहुत आहत हूं। मैं अपने अपमान के उस एक एक क्षण में 100-100 मृत्यु मरी हूं और अब भी मर रही हूं, पर अब मेरे शरीर में रक्त नहीं केवल प्रतिशोध बह रहा है। इसलिए धर्म चाहे कुछ भी कहता रहे, मेरा प्रण तो पूरा होकर रहेगा। और मैं जानती हूं कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो मेरा प्रण पूरा कराएगी।
20: ये तो होना ही था कृष्ण, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने दुर्योधन का जो अपमान किया था उसे उस अपमान का प्रतिशोध तो लेना ही था।
17: पर बलराम दाऊ, प्रतिशोध की ये लड़ाई कब तक चलेगी?
20: कहना कठिन है, पर तुम सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते कृष्ण। तुम जानते हो ना इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ था?
19: अंधे का बेटा अंधा।
20: जैसे इसी बात को पांचाली दूसरे ढंग से भी कह सकती थी पर नहीं कहा, वैसे ही दुर्योधन अपने इस अपमान का प्रतिशोध दूसरे ढंग से भी ले सकता था पर नहीं लिया।
21: दुर्योधन ने पांचाली का इससे पहले जितना अपमान किया है ना भैया, उसे सहने के बाद पांचाली ने जो कुछ भी किया इतना अधिक भी नहीं था।
20: पर यदि पांचाली उन अपमानों को सह गई होती तो उसे इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ता।
21: अब जितना बड़ा पात्र होता है उसमें उतना ही जल आता है ना भैया बलराम। पांचाली के अपमान सहने की एक सीमा थी जिसे दुर्योधन ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। आप बताएं कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं।
20: यदि वो तुम्हारे भ्राता हैं कृष्ण तो मेरे भी तो हैं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा संकोच हो रहा है।
21: आपका संकोच मैं समझ सकता हूँ। दुर्योधन आपका शिष्य है, आपने उसे गदा युद्ध की शिक्षा दी है और इसीलिए वो आपका प्रिय है।
20: तुम तो सब कुछ जानते ही हो कृष्ण।
0: बात क्या है कि दुर्योधन बलराम का प्रिय शिष्य था। वो बलराम के साथ कई साल मिथिला में रहा था, वहीं उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। ब्रज में दुर्योधन ने ही बलराम की पूजा शुरू कराई थी, इसीलिए बलराम बड़ी उलझन में थे कि भाइयों की इस लड़ाई में वो किसका साथ देंगे। ऐसा तो आप भी करते होंगे, नहीं कि किसका साथ दिया जाए किसका नहीं। तो क्या आप जिससे प्रेम करते हैं उसके दोषों को भूलने जाते हैं।
3: महा

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहां के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीरफाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903-69015 पे।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले चलेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
11: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार हो रही है शिक्षा विभाग की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, कई वाहन चालकों पर हुआ जुर्माना। कांशी राम की पुण्यतिथि पर पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डेंगू तथा चिकन गुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और तमाम थाना अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित एवं गंभीर कांडों के त्वरित उद्भेदन, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा आगामी महावीरीय अखाड़ा और दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था एवं आम जन की सुरक्षा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और गृह भेदन से संबंधित लंबित और गंभीर कांडों की समीक्षा करते हुए इनके त्वरित उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अज्ञात कांडों में प्रभावी परेड तथा गंभीर कांडों में प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। पूर्व के लंबित तथा अनुद्वादित गृह भेदन कांडों के उद्भेदन को लेकर विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। वहीं अभियान के दौरान सघन छापेमारी, वांछित और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा पूर्व के अभियुक्तों बेल आउट अपराधियों और संदिग्ध तथा सक्रिय अपराधियों का सत्यापन और ई डोजियर को अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गृह भेदन कांडों के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया गया। प्रत्येक थाने में लंबे समय से बंद पड़े मकानों की सूची तैयार कर उनकी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। चौकीदारों से नियमित रूप से क्षेत्र की बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर बंद कमरों, संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध गतिविधियों, शराब और मादक पदार्थों के कारोबार तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित फीडबैक लेने और प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। महावीरी अखाड़ा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। अखाड़ा वाले थाना क्षेत्रों में पड़ोसी थाना क्षेत्रों से समन्वय स्थापित कर थाना बॉर्डर पर विशेष वाहन चेकिंग, मोटरसाइकिल से आने वाले युवकों की प्रभावी फिक्सिंग करने और अखाड़ा के आसपास मोबाइल, माइक्रो साइकिल पेट्रोलिंग तथा कम से कम 100 मीटर क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। महावीरी अखाड़ा और दुर्गा पूजा के दौरान चाकूबाजी की घटनाओं की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। किसी भी आयोजन की आड़ में चाकूबाजी की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना होने पर संबंधित स्तर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गंभीरता से समीक्षा भी की जाएगी। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। एक दर्जन से अधिक शिक्षकों पर अब तक कार्रवाई की बात सामने आई है। अभी ताजा मामला फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई का आया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षक पंकज कुमार यादव को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में निलंबित किया गया है। मामला बैकुंठपुर के खोमारीपुर विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक पंकज कुमार यादव का है। विभागीय आदेश की अवहेलना और वेतन भुगतान समेत 5 आरोप लगे हैं। अनुशासनिक कार्रवाई के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन करते हुए विजयपुर प्रखंड संसाधन केंद्र पर इनको नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में विजयपुर संसाधन केंद्र ही इनका मुख्यालय होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने यह कार्रवाई की है। इधर लापरवाही के आरोप में प्रधान शिक्षक मनोज कुमार को भी निलंबित किया गया। यह मामला बरौली प्रखंड के 9 प्राथमिक विद्यालय सदौआ भगेलू रावत के टोला में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के मामले का बताया जा रहा है। स्कूल के कमरों में पंखे नहीं थे, बोरिंग खराब थी, हैंड वॉश स्टेशन टूटा और दोनों शौचालयों की स्थिति खराब थी। विद्यालय में रंग रोगन का कार्य भी अधूरा पाया गया था। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इनको निलंबित करने का आदेश दिया है। सिधवलिया के राजकीय मध्य विद्यालय अमरपुरा जगीरहा की शिक्षिका विभा कुमारी पर भी आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है। प्रतिनियोजन के बावजूद नए विद्यालय में योगदान नहीं देने का मामला है। मूल विद्यालय में ही रहने और अनुचित अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा विभाग ने निलंबन के कार्रवाई की अनुशंसा की है। शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की तैयारी से विद्यालय में हड़कंप मच गया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में पुलिस की यह प्रभावी कार्रवाई है। इसको लेकर आज पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक सोमेश मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
14: चलिए पहले बहुत बहुत नमस्कार पूरा गोपालगंज वासियों को। और अभी एक एस्ट्राइप चला रहे हैं, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है पलोदी इंसिडेंट को लेके, राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों शोल्डर साइड भी कोई गाड़ी पार्क ना किया जाए और ना ही गाड़ी को अव्यवस्थित रूप से लगाया जाए, क्योंकि इससे दुर्घटना घटने की पूरी संभावना बनी रहती है, दुर्घटना घटती भी है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 531 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 में मिल जाती है, और आप देख रहे होंगे कि परसों यहाँ उद्घाटन हुआ था और ये मर्ज किया गया है दोनों रास्ते को, तो ये काफी व्यस्त एरिया हो गया है और दुर्घटना घटने की पूरी संभावना यहाँ बनी रहती है, और पहले भी यहाँ बहुत ही भयावह दुर्घटना घटी है। तो इसको देखते हुए मैं था नहीं, तो 2 महीने ट्रेनिंग में गया हुआ था, तो अभी इसको अभियान चला रहे हैं और जितनी भी गाड़ी है सब पे चलान हो रहा है। सबको 2 दिन पहले भी मैं व्यक्तिगत रूप से आके सबको बोला भी था कि गाड़ी यहाँ ना लगाए, गाड़ी के आगे के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट ही है, पेड पार्किंग है, वहाँ लगाए, क्योंकि इससे जानमाल के नुकसान क्यों करना, आप 100 रुपया बचाने के चक्कर में पब्लिक को नुकसान देना या किसी की जानमाल को क्षति पहुँचाना ये किसी तरह से उचित नहीं है। इसी दरमियान में अभियान चला रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और कुछ हो तो समन की राशि का अभी उस पे सजा कर रहे हैं।
13: डेंगू और चिकनगुनिया के संभावित बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इलाज से लेकर अस्पतालों की तैयारी तक को स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिया है। इसी क्रम में सदर अस्पताल में चिकित्सकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें जिले के प्रत्येक प्रखंड से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और एक एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक और मेडिकल ऑफिसर तथा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और मेडिकल ऑफिसर शामिल हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की समय पर पहचान, सही क्लिनिकल प्रबंधन और जटिलताओं की रोकथाम के लिए चिकित्सकों को तैयार करना बताया जा रहा है। ACMO डॉक्टर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण और जिला वेक्टर रोग सलाहकार समिति के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन के संकेत, मूत्र उत्पादन, हेमाटोक्रिट और पल्स प्रेशर की निगरानी के महत्व की जानकारी दी गई। चिकित्सकों को समझाया गया कि गंभीर स्थिति की पहचान के लिए केवल प्लेटलेट संख्या पर निर्भर रहने के बजाय मरीज की समग्र चिकित्सकीय लक्षणों और निगरानी के अन्य मानकों पर भी ध्यान देना जरूरी है। मरीज की स्थिति में अचानक बदलाव होने पर समय रहते आवश्यक उपचार शुरू करने पर भी विशेष जोर दिया गया। जिला वेक्टर रोग सलाहकार अमित कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू फैलाने वाला एडिस मच्छर घरों के आसपास जमा साफ पानी में पनप जाते हैं। टूटे फूटे बर्तन, गमले, पुराने टायर, प्लास्टिक या कागज के कप, नारियल के खोल इत्यादि में ऐसे मच्छरों की पनपने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों को घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि ऐसे मच्छरों के पनपने पर रोक लग सके। लोगों से अपील की गई कि वे अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द या अन्य संबंधित लक्षण होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह और जांच कराएं। समय पर पहचान और उपचार से जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। गंडक नदी में नाव से 276 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर नाव पर शराब छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त कर लिया है और अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के बथना कुट्टी के पास भी एक मोटरसाइकिल से 36 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल जब्त करते हुए मोटरसाइकिल के आधार पर मोटरसाइकिल मालिक और अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के नंदलाल मठिया सड़क के किनारे अंदर बांसवारी से 18 पेटी देशी शराब को जब्त किया है। इसमें भी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गोपालगंज के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पिता जो सेमरा पंचायत के मुखिया विक्रमा राम हैं, उन्होंने पटना में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ वे पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के सदस्य बन गए, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में युवाओं का मौसम के अनुकूल स्मार्ट कृषि हेतु कौशल विकास विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं और किसानों को मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, जलवायु सहनशीलता, मौसम पूर्वानुमान तथा आधुनिक कृषि मौसम सेवाओं के व्यवहारिक उपयोग से परिचित कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के पूर्णिया, वैशाली, बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, जमुई, पटना एवं बक्सर जिले के कुल 20 युवा किसान भाग ले रहे हैं। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप दास और निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा संदेश दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि प्रबंधन की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समय पर मौसम पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक सलाह को कृषि निर्णयों से जोड़कर फसल उत्पादन के जोखिम को कम किया जा सकता है तथा किसानों की आय और कृषि की स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नगर थाना की पुलिस ने 111 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और नगर परिषद के पार्किंग में पुलिस ने छापेमारी की, जहां एक ड्रम से 48 लीटर देशी शराब और 66 लीटर विदेशी शराब मिली। कुल 111 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर अज्ञात के विरुद्ध अनुसंधान शुरू कर दिया है।
15: इधर धान अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 के लंबित सीएमआर के समतुल्य अवशेष धान की राशि संबंधित पैक्स समिति के कैश क्रेडिट खाते में 13/10/2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराने का निर्देश दिया गया है। सभी शाखा प्रबंधक और पैक्स के अध्यक्ष तथा प्रबंधकों को यह राशि जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है।
13: गोपालगंज के एडीएम राजेश्वरी पांडे के कई ठिकानों पर SVU की छापेमारी की खबर आ जाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत के सत्यापन के बाद SVU ने छापेमारी कर जांच पड़ताल शुरू किया है। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि विशेष निगरानी विभाग के अधिकारी इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों के अनुसार इस कार्रवाई की बात सामने आ रही है।
16: ये इनके विरुद्ध में मतलब कि SVU विशेष निगरानी का ही पटना 26/26 पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति का मामला था, दर्ज किया गया था, जिसमें विभिन्न टीम स्थानों पर जो है सर्च वारंट के साथ सर्च कर रही है। तो वो अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे जी
17: आय से अधिक संपत्ति का मामला
16: दर्ज हुआ है, उसी में रेट चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स है तो फिर उसका मूल्यांकन होगा, उसके बाद ही तय होगा क्या है।
13: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। गड़बड़ करने वाले शिक्षकों पर लगातार हो रही है शिक्षा विभाग की कार्रवाई। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है अभियान, कई वाहन चालकों पर हुआ जुर्माना। कांशी राम की पुण्यतिथि पर पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। डेंगू तथा चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
6: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
6: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
6: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92-899-22-567 या 97-714-86-165
6: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
18: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
18: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
18: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
18: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89-73।
19: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
20: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
19: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
20: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
19: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
21: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
22: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
21: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
22: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
23: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
22: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
23: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
22: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
23: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे दिव्या। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस की। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस विषय को गहराई में समझने के लिए हमारे साथ है सेहतिया भैया। भैया, हेपेटाइटिस क्या होता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस में क्या मनाया जाता है?
2: देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इससे लीवर खराब हो सकता है और कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हर साल 28 जुलाई को लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी चलिए इसे समझते हैं और आसान बनाते हैं। मतलब इस बीमारी में जो रुकावटें हैं, जैसे टेस्ट ना होना, इलाज महंगा होना या जानकारी की कमी, उन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।
0: हेपेटाइटिस से दुनिया और भारत में कितने लोग प्रभावित हैं?
2: हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी या सी बीमारी के साथ जी रहे हैं। भारत की बात करें तो करीब 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 6 से 12 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जब बीमार होती है तो इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, पैसों पर, कामकाज पर और पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है।
0: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है? क्या हर तरह का हेपेटाइटिस एक जैसा होता है या कोई ज्यादा खतरनाक भी होता है?
2: हेपेटाइटिस 5 तरह के वायरस से होता है, ए, बी, सी, डी और ई। ये सब एक जैसे नहीं होते। हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर गंदा खाना या पानी पीने से फैलता है। ये थोड़े हल्के माने जाते हैं और ज्यादातर लोग उचित इलाज, आराम और साफ सफाई से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये खून के जरिए फैलते हैं, जैसे संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बिना जांच के टैटू वगैरह से। अगर समय पर इलाज न हो तो ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस या कैंसर तक का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस डी थोड़ा अलग है, ये अकेले नहीं होता, ये सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है। जब बी के साथ डी भी हो जाए तो बीमारी और भी गंभीर हो जाती है।
0: सेहतिया भैया, आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने से फैलता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
2: हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर संक्रमित खाना और पानी पीने से फैलता है। कई बार लोग बाहर का खुला खाना खाते हैं या गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो ये वायरस पेट में चला जाता है और लीवर में सूजन कर देता है। इन दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, जैसे कि शुरू में थकान लगना, भूख कम हो जाना, हल्का बुखार, पेट में दर्द या भारीपन, उल्टी जैसा मन करना, पेशाब गहरा हो जाना और सबसे खास लक्षण है पीलिया, यानी आँखें और चमड़ी पीली पड़ जाना। अब बात करें बचाव की तो सबसे पहला उपाय है साफ सफाई। खाने से पहले और शौच के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना, साफ और उबला हुआ पानी पीना, घर का बना ताजा खाना खाना और खुले में कटे फल सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले और जांच कराएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक हैं। ये खून के जरिए इंजेक्शन या संक्रमित सुई से फैलते हैं। ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और धीरे धीरे लीवर को खराब कर सकते हैं, इससे सिरोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी तो सिर्फ उसी को होता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है, मतलब ये अकेले नहीं आता। देखिए, हेपेटाइटिस डी अपने आप नहीं होता, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो। इसीलिए हेपेटाइटिस बी से बचाव ही हेपेटाइटिस डी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। ये बात है मेरे मौसी के बेटे रमन की। बहुत सीधा साधा लड़का था। जब कॉलेज में था तो एक बार बीमार पड़ा और एक लोकल क्लिनिक से खून चढ़वाया, लेकिन शायद खून की सही जांच नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों बाद रमन को हल्का बुखार, थकावट और कभी कभी पेट में भारीपन महसूस होने लगा। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और स्किन पीली पड़ने लगी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जांच में पता चला रमन को पहले से ही हेपेटाइटिस बी था और अब हेपेटाइटिस डी हो गया है।
0: तो क्या ये डबल वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है?
2: बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस डी लीवर पर और तेज हमले करता है। अगर इलाज में देरी हो जाए तो लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रमन की बीमारी वक्त रहते पकड़ में आ गई। डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया, खास दवाइयों का कोर्स चलाया। रमन ने दवा समय पर ली, आराम किया और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा।
0: तो फिर वो ठीक हो गया?
2: हाँ, आज रमन एकदम स्वस्थ है और मजबूती से जिंदगी जी रहा है।
3: तो दोस्तों हेपेटाइटिस डी का खतरा तभी होता है जब पहले से हेपेटाइटिस बी हो, इसीलिए सबसे जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाएं। और हाँ, खून चढ़ाने या इंजेक्शन लगवाने से पहले साफ सफाई और जांच की पुष्टि जरूर करें।
7: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
8: आरजी, हेपेटाइटिस सी भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर पर असर डालता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके शुरुआती लक्षण नजर ही नहीं आते। अब मैं आपको ट्रक चालक कालीचरण की आप बीती सुनाता हूँ। सालों साल वो सड़क के किनारे कभी होटल तो कभी ढाबों पर खाना खाता रहा। जब तबीयत बिगड़ती तो मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेता था। एक बार उसे कमर में दर्द हुआ तो लोकल क्लिनिक से इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी।
7: तो कालीचरण को क्या लक्षण दिखने लगे?
8: बस यही तो परेशानी है। हेपेटाइटिस सी के लक्षण धीरे धीरे आते हैं। कालीचरण को हर वक्त थकान महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था, हल्का बुखार रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये गंभीर बीमारी के संकेत हैं। फिर एक दिन कालीचरण की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका पेट फूला हुआ सर लगने लगा, कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ जब खून की जाँच हुई तो पता चला कालीचरण को हेपेटाइटिस सी है। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमित सुई या खून के जरिए उसे ये बीमारी हुई है।
7: फिर उसका इलाज कैसे हुआ?
8: डॉक्टर साहब ने कालीचरण को समय पर दवाइयाँ लेने, पूरा कोर्स खत्म करने और खाने पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है, बस धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। कालीचरण ने करीब 6 महीने तक दवा ली, परहेज किया, फिर पूरी तरह ठीक हो गया और आज वो फिर से ट्रक चला रहा है।
7: सेहतिया भैया, सरकार की तरफ से इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?
8: सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए काफी मेहनत कर रही है। साल 2018 में भारत सरकार ने एक खास योजना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह खत्म किया जाए और बाकी वायरल हेपेटाइटिस का बोझ भी कम किया जाए। इस योजना के तहत सरकार कई काम कर रही है। लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है, साफ सफाई और सुरक्षित इंजेक्शन देने की आदतें बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोग हेपेटाइटिस के लक्षण पहचान सकें और समय पर इलाज करा सकें। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों और नर्सों की खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हेपेटाइटिस के मरीजों का सही इलाज कैसे किया जाए। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा है ताकि अगर मां को हेपेटाइटिस हो तो बच्चों में ना फैले। ये चीजें दूसरी योजनाओं जैसे हेल्थ मिशन और स्वच्छ जल सफाई कार्यक्रम से भी जोड़ी गई हैं। कोशिश है कि साथ मिलकर बीमारी को खत्म किया जा सके।
7: सेहतिया भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? क्या वहाँ हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज होता है?
8: आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरअसल गांव और मोहल्ले के पास बने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, जहां लोग सबसे पहले इलाज के लिए आते हैं। ये केंद्र सिर्फ मामूली बुखार या खांसी के लिए ही नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियों के पहचान और इलाज में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस की जाँच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी को जल्दी पहचान यहाँ पर हेपेटाइटिस की जांच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी की जल्दी पहचान हो सके। अगर किसी को लक्षण नजर आते हैं या खतरा होता है तो फौरन स्क्रीनिंग की जाती है और अगर कोई मरीज पॉजिटिव निकलता है तो उसे जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। सबसे अच्छी बात है इन केंद्रों पर इलाज के बाद भी मरीजों की लगातार निगरानी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि मरीज दवा समय पर ले और बीमारी दोबारा न बढ़े। इसके अलावा वहाँ योग, काउंसलिंग और सेहत से जुड़ी दूसरी गतिविधियाँ भी कराई जाती हैं, जिससे लोग न सिर्फ बीमारियों से बचें बल्कि पूरी तरह तंदुरुस्त रहें।
7: दोस्तों, अब तक हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जैसी बीमारियों की बात कर रहे थे जो वायरस से फैलती है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी भी कारण होते हैं जिनका वायरस से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी लीवर बीमार हो जाता है? सेहतिया भैया, जरा समझाइए ना।
8: अरे बिल्कुल, देखिए, जब कोई लंबे समय तक शराब पीता है या कुछ ऐसी दवाई लेता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है तो लीवर में सूजन आ जाती है। इसे गैर वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं।
7: भैया, आप तो समझ में आ गया, वायरस हो या शराब या दवाइयाँ, लीवर तो बेचारा हर हाल में झेलता है।
8: सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है अगर सही समय पर जांच हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है।
7: तो भैया, अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा है या रोज दवा खा रहा है और अगर उसे थकान, भूख कम लगना या पीलापन जैसा कुछ दिखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
8: एकदम जाना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है, वो सही रहेगा तभी बाकी चीजें भी ठीक चलेंगी।
0: तो साथियों आज की एक बात गांठ बांध लीजिए कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होता, हमारी आदतें भी लीवर को बीमार बना सकती हैं। तो सावधान रहिए और जरा भी शक हो तो डॉक्टर से जरूर मिलिए।
2: और अच्छी बात यह है कि अब इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, सरकार भी पूरी ताकत से हमारे साथ है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में हेपेटाइटिस की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है।
0: हाँ भैया, और कई सरकारी अस्पतालों में तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ब्लड टेस्ट और जागरूकता कैंप भी चल रहे हैं, ताकि हर आदमी को सही जानकारी मिले और समय रहते इलाज हो सके।
2: और देखिए, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा है, साथ में जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी मिलती हैं, ताकि किसी को भी पैसों की वजह से इलाज न छोड़नी पड़े।
0: ब्लड बैंक और अस्पतालों में खून की सख्ती से जांच होती है, ताकि संक्रमण आगे न फैले। साथ ही मुफ्त काउंसलिंग और हेल्थ सलाह भी दी जाती है।
3: दोस्तों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ सफाई रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिले। सरकार भी आपके साथ खड़ी है, जांच, इलाज और दवाई अब आसानी से निशुल्क उपलब्ध है।
0: सेहतिया भैया, तो क्या हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से हम पूरी तरह बच सकते हैं?
2: बिल्कुल बच सकते हैं भाई, बस जरूरत है सही जानकारी, समय पर जांच और इलाज की। देखिए, हेपेटाइटिस अब भी हमारे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार की योजनाएं और लोगों की जागरूकता धीरे धीरे इसे हराने में मदद कर रही है, जैसे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये दोनों मिलकर गांव-गांव तक इलाज, जांच और जरूरी दवाएं पहुंचा रहे हैं।
0: दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत अहम बात याद दिलाती है कि हमें इस बीमारी के बारे में चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए। कई लोग आज भी हेपेटाइटिस को लेकर शर्माते हैं, डरते हैं या इलाज टालते हैं, लेकिन इसमें बीमारी और बढ़ जाती है। अगर हम समय पर जानकारी लें, जांच कराएं और इलाज शुरू करें तो ये बीमारी पूरी तरह से काबू में लाई जा सकती है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। अब जरूरत है कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर जागरूक बने और दूसरों को भी समझाएं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। याद रखिए कि अगर सेहत सही रहेगी तभी तो जिंदगी में असली लाभ मिलेगा। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
11: ठक ठक
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
23: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
23: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
17: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
24: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
23: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।

0: खुशी से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
8: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसीडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
6: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
4: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
7: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके और लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
4: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
8: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
9: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
8: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
9: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
8: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
10: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
2: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
1: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
2: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
1: कहाँ?
2: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-023-35-8-76 या 95-999-27-982।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले पार्टी नेताओं पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज पटना में राज्य स्तरीय सेवा ही संकल्प अभियान में शामिल होंगे। और भागलपुर जिले के राघोपुर काजी कुरैया में गंगा नदी के तटबंध में लगभग 125 मीटर तक कटाव से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी

0: और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव में एनडीए के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना स्थित लोक सेवक आवास में कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक के बाद श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए साझा रणनीति बनाई गई है।
1: जो एनडीए के प्रचार करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनडीए के सभी माननीय सांसद, सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय विधायक और सभी विधान परिषद के सदस्य और जो उम्मीदवार थे, 7 उम्मीदवार बैठक में शरीक हुए और उस बैठक में सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा कि 8 उम्मीदवार को जिताना है और हर हालत में उनको मतदाताओं से मिलजुल करके मतदान केंद्र तक पहुंचा करके उनको जिताने के लिए सब लोगों ने आग्रह भी किया है, निर्देश भी जारी किया है।
0: वहीं भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता सभी उम्मीदवारों को जितवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: देखिए, एनडीए की बैठक तो मैंने हमेशा चलते रहती है, ये एक प्रक्रिया है एनडीए के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी। लेकिन आज की बैठक में हम सब लोग विशेष रूप से जो अपने शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा है उसमें 8 के 8 प्रत्याशी हमारे जीते, इसका मूल मंत्र आज हमारे नेताओं के द्वारा मैंने दिया गया है और मैं समझता हूँ कि भारी बहुमत से हम 8 सीट जीतेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है।
0: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय जयराम राय और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अर्चिता प्रकाश ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 90 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 40 उम्मीदवार सारण स्नातक क्षेत्र से हैं, पटना स्नातक से 18, तिरहुत से 17 और कोसी स्नातक क्षेत्र से 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ पटना और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 18-18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को कराई जाएगी। गौरतलब है कि इन सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। आयोग ने फॉर्म 7 के जरिए अनावश्यक आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके अनुसार अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। राज्य स्तरीय सेवा ही संकल्प अभियान और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सेवा चित्र और भाषण प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों के बीच पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री श्री जोशी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,80,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,100 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों के खाते में कुल 1,237 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों की थानेवार सूची बनाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। श्री चौधरी ने पटना में विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य माहौल बनाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने डायल 112 की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को विपक्ष प्रायोजित आंदोलन बताया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि CJP विपक्ष से मिलकर एक राजनीतिक एजेंडे के लिए कार्य कर रहा है।
1: देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जब पहली बार छात्रों का आंदोलन की थी तो छात्रों को लगा था कि नहीं, ये हमारे हित में है, लेकिन अब छात्र भी उनसे कट गए क्योंकि स्पष्ट रूप से वो दिखाई पड़ रहा है। उनका भी एक ही एजेंडा है कि देश से नरेंद्र मोदी जी हटे, अमित शाह जी हटे, मतलब राजनीतिक एजेंडा आ गया और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो विपक्षी दलों के साथ अब काम कर रहे हैं, अब छात्रों का भी समर्थन उनको।
0: गया जी में पितृपक्ष मेले का आज अंतिम दिन है। देश विदेश से आए श्रद्धालु विभिन्न वेदियों पर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: गया जी में पितृपक्ष मेले के अंतिम दिन आज सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या का अनुष्ठान किया जा रहा है। देश विदेश से आए श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी और विभिन्न पवित्र वेदियों पर पिंडदान कर रहे हैं। अनुष्ठान के बाद श्रद्धालु गया वाल पंडा से सुफल और आशीर्वाद लेते हैं। आज शाम पितरों के मोक्ष के लिए देव घाट और अन्य स्थानों पर दीप दान किए जाएंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अब तक मेले में 48 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: भागलपुर जिले के राघोपुर काजी कुरैया क्षेत्र में महादेवपुर घाट के पास गंगा नदी के तटबंध में लगभग 125 मीटर तक कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कटाव के कारण तटबंध के पास कुछ घरों और ब्रह्म बाबा मंदिर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम ने सुरक्षात्मक कार्य शुरू कर दिए हैं। इधर बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर लोगों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से कटाव प्रभावित क्षेत्र और नदी किनारे असुरक्षित स्थानों से दूर रहने की अपील की है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। आज सुबह राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे, साथ ही तेज हवाएं चलने का समाचार है। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान खगड़िया, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और सहरसा जिले में कुछ स्थानों पर वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली और सारण जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने अगले 28 घंटों के दौरान राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में खेल परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। श्रेयसी सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को समय पर काम पूरा नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने बताया कि सभी वर्गों का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने CJP के दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़ी खबरों पर लिखा है, दिल्ली की जबरदस्त किलेबंदी, बिहार से दिल्ली जाने वाली 6 समेत 250 ट्रेनें रद्द। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार में बाढ़ से नुकसान का आंकड़ा पहुंचा 10,000 करोड़ रुपए के पार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, एआई ने पकड़ा आयुष्मान का फर्जीवाड़ा, पटना के 4 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले पार्टी नेताओं पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज पटना में राज्य स्तरीय सेवा ही संकल्प अभियान में शामिल होंगे। और भागलपुर जिले के राघोपुर काजी कुरैया में गंगा नदी के तटबंध में लगभग 125 मीटर तक कटाव से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। तो तो दोस्तों हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029294921 पर। जी हाँ 8029294921 पर। तो दोस्तों आइए जानते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम की तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों आपको अपनी तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात किसी से सहायता न लें और इंटरनेट में जवाब सर्च न करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम का रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
7: हेलो
15: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम।
15: नमस्कार।
7: नमस्कार, नाम बता दीजिएगा अपना।
15: अरविंद कुमार।
7: और कहाँ से हैं आप अरविंद जी?
15: चक्की होगा सर, उसका प्रखंड में पड़ता है
7: जी। क्या करते हैं आप?
15: पढ़ाई तो रहे हैं, 12 से पढ़ाई की है।
7: अच्छा,
15: काम करते हैं
7: जी। आगे क्या करना है?
15: अब देखते हैं, पढ़ना ही है।
7: चलिए तब तो ठीक है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
15: जी बहुत बार किया है।
7: आपकी मम्मी पापा का क्या नाम है?
15: मम्मी जी का नाम है चिंता देवी और पिता जी का नाम है।
7: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट लेने के लिए?
15: जी।
7: तो अरविंद जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है
15: जी।

0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऐसा नहीं होगा।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लॉक ऐसे
0: लॉक किया जाए?
1: जी लॉक करिए।
0: तो अरविंद जी आपको बता दें, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी तैयार हैं, बोलिए।
0: आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए? तो अरविंद जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह फरवरी का
0: है। श्योर है?
1: श्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी लॉक कीजिए।
0: तो अरविंद जी आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 12 फरवरी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन बी 13 फरवरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्विज कंटेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्विज कंटेस्ट में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम। जी रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं कमरान रफी बोल रहा हूँ।
0: और कहाँ से हैं आप?
2: जस्टिसान बकरे सुल्तान। कमरानी नाम है
0: जी। जी
2: रफी मिला दीजिए।
0: हाँ
2: मैं तो बहुत पुराना लिस्टर हूँ, आप नहीं है?
0: जी जी
2: सोनी जी होती तो पहचान लेती।
0: हाँ हाँ
2: मैं तो 2009 से सुनता हूँ। अपना
0: वैसे क्या करते हैं आप?
2: ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं आया हूँ फिलहाल दिल्ली में।
0: जी जी
2: दिल्ली में मैं तैयारी करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, कंप्यूटर सीखूंगा, यही सब करूँगा और क्या करूँगा।
0: तो तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए? कमरान जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है की

0: बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार।
1: सवाल का सवाल हम समझे नहीं
0: सही। सवाल है आपसे कि बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
1: अच्छा।
0: आपका समय शुरू होता है अब।
1: तो इसमें डाल दीजिए पटना को डालिए।
0: जी
1: पटना को डाल दीजिए।
0: प्योर है
1: जो तो लिखा है राजनीति के बारे में उतना जानते हैं पहले।
0: अच्छा जी लॉक करते हैं तब।
1: हाँ करिए पटना लॉक।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पटना बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए। तो आपसे दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी
0: श्योर है। लॉक करते हैं तब। तो कमरान जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए। तो आपका तीसरा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी मैरी कॉम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी करिए।
0: प्योर है।
1: ऑप्शन सी
0: प्योर है आप।
1: प्योर तो नहीं है।
0: लॉक किया जाए।
1: हाँ ऑप्शन सी करिए।
0: तो कमरान जी मैं आपको बता दी कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मैरी कॉम गलत जवाब है। सही जवाब है कि ऑप्शन बी किरण बेदी। कोई बात नहीं नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो। गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: सुनिए सुनिए सुनिए
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा फैंसी साड़ी लेडी सूट क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: अरे ए चाची जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
7: अरे ए बबुओ परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80 29 94 921 पर। जी हाँ, 80 29 94 921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
9: हेलो, नमस्ते
0: जी। नमस्ते, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
9: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
9: जी, नीतू बोल रहे हैं।
0: नीतू?
9: हाँ।
0: और कहाँ से हैं नीतू जी आप?
9: पिपराही।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
9: मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ, 10th पढ़ाई।
0: अच्छा, क्या करती हैं वैसे अभी?
9: वैसे ही अभी घर के बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा जी,
9: काम भी करती हूँ।
0: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में पहले कभी कॉल किया है?
9: हाँ किए।
0: अच्छा, तो तैयार है आप इस खेल को खेलने के लिए?
9: जी तैयार।
0: तो नीतू जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता स्वयंवर में किस महर्षि के साथ गए थे? ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: महर्षि वशिष्ठ होगा।
0: श्योर है?
1: जी श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो नीतू जी मैं आपको बता दूं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी महर्षि विश्वामित्र। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिए।
2: हाँ हेलो नमस्ते मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी।
0: नाम क्या है आपका?
2: सुधा कुमारी।
0: सुधा?
2: जी मैम।
0: और कहाँ से हैं आप सुधा जी?
2: बता।
0: आपके आसपास कोई है?
2: नहीं मैम,
0: मैं अकेली हूँ। ऐसा तो लग रहा है मुझे कि कोई है।
2: नहीं नहीं,
0: अगर कोई होगा तो मैं फोन काट दूंगी।
2: नहीं मैम, अकेले हूँ। बोलिए।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ पास की हूँ, ये 11th हूँ।
0: अच्छा जी, तो आगे क्या करने का इरादा है?
2: अभी कुछ सोचे नहीं हूँ।
0: चलिए फिर, तब तो ठीक ही है। इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
2: ठीक है मैम।
0: और वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: सीता का नाम, माता का नाम है श्रीमती चंद्रमती देवी, पिता का नाम है श्री सुमन माधव।
0: तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? सुधा जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी अपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एको
0: हेलो चोर है?
1: नहीं कंफर्म तो नहीं।
0: तो मैं सुधा जी बता दूं आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अपनी चौधरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो बेब कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। हाँ जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
2: हम नाम सालू कुमारी है।
0: सालू कुमारी?
2: यस मैम।
0: और कहाँ से हैं सालू जी?
2: से भी जरूरत है।
0: क्या करती हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में है अभी?
2: नाइन्थ।
0: आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: यूपीएससी में जाना है सिविल सर्विस में।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो अच्छी बात है। और तो इससे पहले आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कभी कॉल किया है?
2: मैंने एक बार 10 प्रश्नों का पूरा सही सही उत्तर भी दिया था।
0: अच्छा, ये बात तो चलिए ठीक है। और वैसे आपकी मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: हाँ, मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम वीरेंद्र कुमार प्रसाद।
0: तो तैयार है आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल खेलने के लिए?
2: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपके आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तो ऑप्शन सी कीजिए, 13 फरवरी।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर नहीं है।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, मैं आपको बता दूं, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: हिंदी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिंदी बिल्कुल गलत है और सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्फ्रेंस में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80 29 94 921 पर। जी हाँ, 80 29 94 921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
8: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी मैडम।
0: जी नाम बता दीजिएगा।
8: रंजीत कुमार।
0: जी रंजीत जी, कहाँ से हैं आप?
8: बड़े पटनावादा।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
8: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में हैं अभी?
8: अभी तो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं।
0: अच्छा जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आज पहली बार कॉल किए हैं?
8: पहले एक दो बार विनर भी बन गए हैं।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
8: मेरे पिता का नाम श्री जग महतो और मेरी माता का नाम श्रीमती इंदु देवी।
0: जी तो तैयार है इसको खेलने के लिए?
8: जी मैडम।
0: ओके। तो रंजीत जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
1: ऑप्शन सी बोधि वृक्ष।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: और आपको बता दें कि आप पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधि वृक्ष बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: तो आपका आपसे दूसरा प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिता जी का क्या नाम है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी सपनी चौधरी।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो आपको बता दूं आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सपनी चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके। तो आपका आपसे तीसरा प्रश्न है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ध्रुव पर।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ध्रुव पर गलत जवाब है। और सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर दिशा में।
1: ठीक है मैडम।
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर से क्यूज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेल्प क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते सोनी मैम।
0: नमस्ते, मेरा नाम सोनी नहीं है, मैं भारती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम पल्लवी है।
0: और कहाँ से हैं आप पल्लवी जी?
2: मैं भेड़िया से हूँ।
0: और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: टेंथ में पढ़ती हूँ मैं।
0: अच्छा जी, तो आगे और क्या पढ़ने का इरादा है?
2: अभी सोचते नहीं है।
0: अच्छा, अभी सोच रही हैं। चलिए कोई नहीं। तो इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं? तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल के लिए? तो पल्लवी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोही वृक्ष। समय शुरू होता है आपका अब।
1: बोधी वृक्ष।
0: ऑप्शन सी।
1: श्योर है?
0: यस मैम।
1: लॉक किया जाए?
0: यस मैम। तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बोधी वृक्ष बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: विश्व रेडियो दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी।
1: आपका समय शुरू होता है अब। दस फरवरी।
0: क्योर है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 10 फरवरी बिल्कुल गलत है। सही जवाब है 13 फरवरी।
1: थैंक यू मैम।
0: कोई नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कंटेस्ट में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी प्रणाम।
0: प्रणाम। और कहाँ से हैं आप? गोलू जी। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? तो आपने कभी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र यादव, माता जी का नाम श्री मुकुल यादव।
0: तो आपने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए? तो गोलू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? विश्व के मानचित्र में भारत देश किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए बीचों बीच में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में।
1: उत्तर दिशा में।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: जी मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा में बिल्कुल सही जवाब है। तो गोलू जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: श्योर तो नहीं।
0: ओके। तो गुरु जी मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उर्दू बिल्कुल सही जवाब है।
1: थैंक यू।
0: तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है कि नेताजी के उपनाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सुभाष चंद्र बोस।
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक किया जाए?
1: यस मैम।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। आप बता रहे हैं पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं स्वामी दयानंद।
0: श्योर है?
1: श्योर सनम परिकुलर से जी।
0: तो गुलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद स्वामी बिल्कुल सही जवाब है। तो गोलू जी आपका प्रश्न आपसे ये है कि लिखावट का ना बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी को लॉक कीजिए।
0: ऑप्शन
1: सी।
0: सी?
1: जी मैम।
0: श्योर है?
1: नो मैम परीक्षित हो चुके।
0: तो गोलू जी मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी।
1: जी मैम।
0: कोई बात नहीं, फिर अगले संडे ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM-Z पर।
9: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कंटेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कंटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे कॉल करें 80-29-94-921 पर। जी हाँ, 80-29-94-921 पर। तो आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
10: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: सोनू दुबे बात कर रहा हूँ, पाती।
10: जी एक बार और नाम बता दीजिएगा।
1: सोनू दुबे की पाती से।
10: अच्छा जी, क्या करते हैं आप?
1: ग्रेजुएशन लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ।
10: तो आगे क्या करना है आपको?
1: इन सर्विसेज की तैयारी करनी है।
10: अच्छा जी, चलिए तब तो और बढ़िया है। और इससे पहले आपने कभी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है?
1: जी जी।
10: वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
1: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का संतोष देवी।
10: जी जी, तो आप तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए?
1: जी जी।
10: तो सोनू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है कि

0: 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: ऑप्शन सी महात्मा गांधी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो मैं आपको बता दूं सोनू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गंगा को ठीक कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक किया जाए?
1: जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा प्रश्न आपसे है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? ऑप्शन ए छठवें, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी आठवें। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सातवें फिर कीजिए।
0: क्योर है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी जी।
0: तो सुनो जी, मैं आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सातवें बिल्कुल सही जवाब है। तो आप तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधी।
1: अवधी भाषा में लिखा है।
0: तो आपको मैं बता दूं सोनू जी कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अवधी बिल्कुल सही जवाब है। तो पांचवे प्रश्न की तरफ चला जाए।
1: जी।
0: तो आपका पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि दो हजार चौबीस में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? 2024 में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के कितने बार शपथ ली? ऑप्शन ए सातवीं, ऑप्शन बी आठवीं और ऑप्शन सी नौवीं बार। श्योर है?
1: नहीं,
0: तो चलिए सुनू जी, मैं आपके पांचवे प्रश्न के ऑप्शन सी नौवीं लॉक करती हूँ। तो आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपसे आपका छठवां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सपनी चौधरी, ऑप्शन सी राम कृपाल चौधरी।
1: ऑप्शन सी को चूज कीजिए। सपनी चौधरी।
0: सपनी चौधरी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सपनी चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? मगध प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी जहानाबाद।
1: ऑप्शन सी है ना?
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, श्योर नहीं।
0: तो लॉक करें?
1: जी।
0: तो मैं बता दूं सुनो जी आपको कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जहानाबाद बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए गया।
1: ठीक है,
0: कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे फिर ट्राई की।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
2: आस्टिका खातून।
0: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। आस्टिका खातून, किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: 10th में।
0: अच्छा जी, और क्या बनना चाहती हैं आप?
2: तो पढ़ाई करेंगे।
0: अच्छा, वैसे आपके मम्मी पापा का क्या नाम है?
2: आपका नाम डॉक्टर अली, मम्मी का नाम रबीह खातून।
0: तो आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है पहले?
2: ना, पहली बार।
0: अच्छा जी, तो तैयार हैं आप इस खेल को खेलने के लिए?
2: बिल्कुल।
0: तो आपसे आपका पहला प्रश्न है,

0: विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। तो चलिए अंशिका जी, आपके ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आप, मैं बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए? तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि लिखावट का न बनना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। तो अंशिका जी, आपको बता दूं, आपको बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट संडे फिर से क्यूज कॉन्टेस्ट में ट्राई कीजिएगा। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
2: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
1: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
1: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कोइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: छब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर
3: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797065775।
7: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ Radio 98.4 FM पे कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी, फिर गाने के साथ इंजॉय करना है। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हमारे नंबर 7277-1665 पे अभी टेक्स्ट मैसेज करें। यहाँ पे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे पहला मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या हाल है सर जी, मिलेश शबिया फील्ड गोपालगंज से कमलेश जी का मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म जान से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, सॉन्ग इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। और इस मैसेज को करती हैं शुक्लवार से निशा, तो आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हम भी जुड़ गए हैं सोनू बाबू, कैसे हैं, हम भी ठीक है। तो बिल्कुल हम भी बढ़िया हैं, आप सभी के बीच उपस्थित हैं, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शुक्रवार की रात रेडियो रिमझिम का साथ, सोनू सर की आवाज़ में घुल जाइए मिठास, दोस्ती की तराने खुशियों की बरसात, सुनते सुनते खिल उठे हर दिल की रात। हेलो हाय नमस्कार, आज सॉन्ग सुना दीजिएगा, चुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। राघव जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेघनाथ माझी जी सर नमस्ते, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बन रहे हमारे साथ, कहते हैं कि नवरात्र चढ़ने वाला है रविवार को, आज मुझे सुभाष राजा का देवी गीत सुना दीजिए। एकदम सुनाएंगे, फिलहाल बन रहे आप हमारे साथ। पहले गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्ले करते हैं कमलेश जी की सॉन्ग रेडियो 98.4 FM पे।

0: काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सुनने आप सब। यदि आप भी इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, इस तरह के गाने आप पसंद करते हैं या ओल्ड इज गोल्ड गाने पसंद करते हैं रफ़ी साहब और इनके सारे साथीगढ़ जैसे सिंगर का, तो आप फरमाइश सकते हैं। और फरमाइश करने के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। निशा शुक्लवा से की हैं, इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम सोनू सर जी, मैं महबूब आलम केवला कटिहार से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती विलेज उजवलिया उचका गांव प्रखंड से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाना बजाने के लिए थैंक यू। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशन सुनने के लिए। कमलेश जी बन रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं।
1: मैं अक्सर लोगों का

0: इसलिए जा रही है कि समीर तुझसे प्यार नहीं करता?
1: नहीं, इसलिए जा रही हूँ कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। समीर ने एक फैसला किया है और मैंने उस फैसले को मान लिया। मैं समीर का प्यार नहीं बन सकती, ना सही, मैं उसकी मजबूरी नहीं बनना चाहती।
2: केपी, ये मुस्कान को दे देना और साथ में ये भी।
3: मुस्कान मैडम।
2: राइट।

0: आनंद।
1: अगले न्यू ईयर में अब पैक में नहीं होंगे, शायद मैं तो किसी के साथ भी नहीं रहूंगा। आप उन्हें न्यू ईयर विश करने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे?

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा,
10: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम जिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स दिल से आपको, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम जिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर जी मैं भी जुड़ गई हूँ निशू फ्रॉम झिरवा से सुपर सॉन्ग। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचे हुए और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं मेघनाथ माझी जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है देवी गीत सुभाष राजा जी की आवाज़ में। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और देवी गीत है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए तो आगे बढ़ा जाए और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगले गाने की फरमाइश किए हुए हैं राघव जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। छिप गई सारे नज़ारे हो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाई दिन में रात हो गई। तो चलिए राघव जी आपकी फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज भी किए हुए हैं कि सोनू सर की आवाज़ सुनने को दिल बेकरार है, रेडियो रिमझिम के शो का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, हम आपके पास है बस सुनने की चाहत लिए, आपकी मीठी आवाज़ सुनने चेहरे पे मुस्कान लिए। सोनू सर के सॉन्ग महफिल में खुशियों की बरसात हो, रेडियो के सारे दोस्तों के दिलों में प्यार की बात हो, आपकी आवाज़ गूंजे हर दिल झूम जाए, रेडियो रिमझिम का शो सुनकर हर दोस्त खुशी से मुस्कुराए। बिल्कुल कोशिश रहेगा, और आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रूम छिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और लिखा गया है कि हम लाइन में खड़े हैं। सोनू जी बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, और आप ही के गाने हम बजाने ही वाले हैं, तब तक आपका मैसेज पहुंच चुका है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, और कल से काजल लगा कर निकलिएगा, आप किसी के नज़र ना लग जाए। और मैसेज को करते हैं, दिलीप जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि राघव भाई कौन सा कंपनी का काजल लगाए कि दिन में रात हो गई, हम भी जाने की कहते हैं कि आगे की और कौन सा दिन वाला काजल है जो रात को लगा लिया जाए तो दिन हो जाएगा, ये भी बताइएगा। बिल्कुल राघव जी सुन रहे होंगे तो बिल्कुल बताएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुपर संग वेरी नाइस, मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर गाना प्ले करने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एम छम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है महबूब आलम जी के तरफ से कटिहार से, और गाने की फरमाइश एक फूल दो मालिन से, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, डेडिकेट करते हैं आजाद अंसारी, वीरेंद्र गुप्ता, रविंदर और रुबीना और सभी दोस्तों को। सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सब रेडियो 94.4 FM पे, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

कभी प्यारा संग रेडियो रेम 6.4 FM पे सुन रहे थे। अभी हम सभी महबूब जी की फरमाइश और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कौन है सर, थोड़ा नाम बताइए तो। और इस मैसेज को करते हैं राघव जी। राघव जी और कोई नहीं, वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया डॉक्टर नेपाल बॉर्डर से पूछ रहे थे कि कौन से कंपनी का काजल लगाते हैं, ताकि हम भी दिला सके अपने मैडम जी को, क्योंकि उनको भी दिन में रात में दिन करना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या महबूब भाई इतने दिन कहाँ थे, क्या इन्हीं के चक्कर में थे क्या, पर अभी तो दंड लेकर खड़ी हैं, तो कार्यक्रम में आइए और पीछे इनके ना पड़े। शुक्रिया हमें सुनाने के लिए। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वाओ सुपर सॉन्ग। और मैसेज करते हैं सुरभि नवादा गोपालगंज से, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश यहाँ पे बंगरा से पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाने वाली फरीदा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सब रेडियो 6.4 FM पे

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे आप सब सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय जो है समाप्ति का हो चुका है और गाने अभी आगे लंबे हैं। सो इसी को अंतिम गाने मानते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। तो आप सब सुनते रहें और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। नमस्कार।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी

0: कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 97765-65750।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी और गाने की बोल है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, और कुमार शानू और अलका याग्निक का गाना है गुलाम। तो बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी आप सभी सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा गाना, और गाने की बोल थी आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे हमारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते भारती दी, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हम भी बैठ गए हैं रेडियो के सामने कान और ध्यान लगाकर, कोटा राजस्थान से कपिल, और आपकी आवाज़ और मस्त गाने सुनने के लिए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो नमस्ते, अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से, और मेरी भी एक फरमाइश है, सॉन्ग भोजपुरी लिंक भेज दिए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है ना, अभी जुड़ चुके हैं हम भी फरीदा भंगरा से, और हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और प्यारी सी लाइन पहुंची हुई है जो कि लिख रही हैं तुम्हारी आंखों में खो जाने का दिल करता है, तुम्हारे पास आकर ठहर जाने का दिल करता है, मोहब्बत तुमसे इस कदर हुई है ऐजान कि हर लम्बा बस तुम पर मर जाने को दिल करता है, हर लम्हा बस तुम पे मर जाने का दिल करता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि सत्यम यादव और गाना सुनना चाहते हैं, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी गुड आफ्टरनून, का हाल बा दीदी जरूर बताएं, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, और यहाँ कुछ प्यारी लाइन पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मोहब्बत का जादू तेरा नाम में है, तेरी यादें अब मेरी हर सांस में है, तू ना हो पास तो गम सताता है, तेरी चाहत मेरी सांसों में समाता है। और लिख रहे हैं कि मैं हरिओम गोस्वामी मतमोहन आजमगढ़ से, और मेरे भी ये गाने की फरमाइश है ज़रूर पूरा कीजिएगा, और गाने की फरमाइश है महरून कलर सड़िया, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 AMZ पर।
5: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हरिओम गोस्वामी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए और आज मैं अपने फैमिली के साथ आपके गाने बजाने का वेट कर रहा था। तो सो वंस अगेन थैंक यू। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो दी, गुड आफ्टरनून भारती दी, मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और कैसी हैं आप दीदी, खाना हो गया क्या? तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा तो खाना हो गया है और मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं और क्या हो रहा है अभी? और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भोला कुमार बेतिया जिला से बोल रहा हूँ और दुर्गा जी के मंदिर से, और आप मेरी एक गाने की फरमाइश पूरा कीजिएगा। तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पिता शराब है, कहता है नशा खराब है, खुद सुधरता नहीं, कहता है किस्मत खराब है, यहाँ एक हर एक आदमी की यही कहानी है, दोस्त अच्छा कुछ नहीं कहता और कहता है ज़माना खराब है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचे हुआ हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम पंचायत जई छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश और गाने को प्ले करते हैं।
4: गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम सतेंद्र कुमार है, मैं करवाला रिफाइनरी प्रोजेक्ट इराक से बोल रहा हूँ। मैं मुझे गाना सुनना है कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे, असर छोड़ जाऊंगा, प्लीज मैम ये गाना हमको सुनवा दीजिए।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कुमार सानू की आवाज़ में, और गाने की बोल थी इस तरह आसिकी का असर छोड़ जाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँच गया है, और चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू मैं गाना बजाने के लिए, मैं गाना सुन रहा हूँ। थैंक यू हम लोग इराक में है कलवरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे, हम लोगों को परदेशियों को तो गाना ही से ही इसी मिलता है। बहुत पुराना अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है। थैंक यू गाना बजाने के लिए। लिखा किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करें, मिला बेदर्द फिर वहाँ फरियाद क्या करें। हम लोग को तो परदेशियों को सॉन्ग ही सहारा होता है।
0: और यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार प्रणाम हैप्पी में, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ। और मैम आज हमारी एक फरमाइश है, वह बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय कैसी हैं भारती जी, क्या हाल है, खाना पीना हो गया है, हमको मालूम है आप खाना वाना खा लिए होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रिमझिम रेडियो में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं कृष्णा कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरे भी गाने को बजा दो। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है। और रोहित कुमार हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है। गाने की बोल है जीता था जिसके लिए, और ये गाना भी कुमार शानू की आवाज़ में है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: थोड़ी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रूम छिप 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:38 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रूम छिप का ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि खाना खैनी है, खाना खा रहे हैं और हम भी अच्छे हैं आपकी दुआ से। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी, तो जी मेरी दुआ से नहीं, भगवान की कृपा से सब कोई अच्छे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम नमस्ते, मैं सूर्यभान सिंह विसुंदरी घुरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़ चुका हूँ और मुझे भी एक गीत सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है रोहित कुमार जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, आ गई नहीं हम और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम। और लिख रहे हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत शो चल रहा है जी मैम और सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, असलम सऊदी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: केकरा से कहें दिल के बतिया भोजपुरी गाना सुनाइए।
0: तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: मेरा जुनून मिल जाता और चाह के निकल

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना सुखवा सवतिया हो गया, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत प्यारा दर्द भरा भोजपुरी गीत। सूर्यभान सिंह विसुंदरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी कहाँ वानी, नाम बताएं और प्लीज़ बताएं। तो जी मनोरमा जी भी अपने काम में भी लगी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा, बोलिए बजेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जी अपने गाने की फरमाइश जो भेजे हुए हैं उसे चेंज कर दे, कोई और गाना भेजे तो मैं बजा दूंगी, पर ये गाना मैं नहीं बजा सकती। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है हमारे पास वॉइस के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो भारती मैम, नमस्कार। हम रजीम अंसारी मास्को रसिया से बोल रहा हूँ। मैम मेरे पास टाइपिंग करने का समय नहीं है, प्लीज़ आप कोई भी भोजपुरी गाना बजा दीजिए बढ़िया सा। नील कमल सिंह का गाना बजाइए।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है।

0: हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर, संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और उससे पहले यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
7: नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: हम थाने से रमेश प्रसाद बोलते रहे।
6: जी जी, का हाल चल बा रहा? और
7: हाल चाल ठीक बा, आप तो ठंडी आवे लागल धीरे धीरे।
6: जी जी, ठंडी तो आवे लागल,
7: बरखा, पंखा काम खत्म होता। गाना सुना दिए
6: बता दें।
7: प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। हेलो।
6: हाँ, और गाना क्यों के सुना हूँ के बा?
7: आप सुरती वाला बारे राम बारे किराना वाला बारे हरिंदर आम पप्पू बारे समोसा वाला रेडियो।
6: जी जी, तो राव गाना हम प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: नमस्ते
6: नमस्ते।

0: के लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:02 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजेगा कि नहीं बजेगा बता दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। और मैसेज करने वाले हैं भोला कुमार जी बेतिया से और यहाँ पे इसी के साथ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा ग्राम पंचायत जय छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है आँख है भरी भरी और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं वाओ आँख है भरी बेहद लाजवाब सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से शमशाद अली जुड़े हुए हैं और एक शायरी आप सभी के लिए और लिख रहे हैं कि नफरत नहीं है किसी से बस अब कोई अच्छा नहीं लगता, नफरत नहीं है किसी से बस अब अच्छा नहीं लगता, ये झूठे चेहरे का मेला अब मुझे सच्चा नहीं लगता, बहुत करीब से देखा है मैंने रिश्तों को बदलते हुए, अब किसी का साथ सब उम्र भर का पक्का नहीं लगता। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जीना चाहता हूँ मगर जिंदगी राज नहीं आती, मरना चाहता हूँ मगर मौत पास नहीं आती, उदास हूँ इस जिंदगी से क्योंकि आपकी यादें भी तो तरपाने से बाज नहीं आती। और बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँच हुई है और काफ़ी देर से अपने गाने की फरमाइश का वेट कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं भोला कुमार बेतिया जिला से और गाना सुनना चाहते हैं। जिकरा से लव कैलू और बिना देरी की आपके गाने को हम प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:16 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं सत्यम यादव जी, जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, मुझे गाना सुनना है, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँच हुई है। तो मैं बता दूँ आपको कि इसमें कोई भी धर्म और कोई भी कास्ट से रिलेटेड मैं गाना प्ले नहीं कर सकती। अगर आप दूसरे गाने की फरमाइश करेंगे तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय आरजे भारती जी, इसी के साथ मैं भी एंट्री कर रहा हूँ और आपके शो में आ गया हूँ। और लिख रहे हैं कि जे करे से लव कैलू माई फेवरेट सॉन्ग, जो अभी आपने बजाया उनको, जो अभी आपने गाना बजाया और जिन्होंने ये गाना बजवाया उनको मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद कीजिएगा। पर मैसेज कर रहे हैं सत्यम जी कौन से गाने बजा सकते हैं, तो जी मैं आपको बता दूं कि इसमें मूवीज के हिंदी गाने बजते हैं और भोजपुरी गाने बजते हैं, और भोजपुरी भी गाने बजते हैं, तो अश्लील गाने की फरमाइश ना करें। अभी आपको बताया है मैं भक्ति गाने नहीं प्ले कर सकती, और आप ऐसा ना करें। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, मेरा नाम संध्या कुमारी पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते कार्यक्रम प्रसारक मनोरमा भारती मैम जी, और हम भी गीत की फरमाइश लेके पहुँचे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं बसंत कुमार न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरे अभी गाने की फरमाइश को पूरा कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं सूर्य भान विसुंदरी भरो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है, मैसेज करने वाले हैं अजीत कुमार निषाद और गाने की बोल है छोड़ छोड़ पगला और बढ़िया गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके हम गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, लिख रहे हैं कि दिल लगाने से अच्छा है घर में झाड़ू लगा लो, मम्मी भी खुश, घर भी साफ। और ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मेरा नाम अलाउद्दीन अली है और मेरे गांव का नाम बबनौली सिवान जिला, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, क्या हाल है? भारती मैम ठीक हैं, और विवेक कुमार सासाराम बिहार आलमपुर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं हमको भी एक गाने की फरमाइश किए हैं, सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक आदमी बस में बैठा इंग्लिश में बात कर रहा था, साथ में बैठा आदमी, घर पर कौन सी भाषा में बात करते हो? आदमी, घर पर तो गुंगा बन कर रहता हूँ, बोलते ही लड़ाई हो जाती है। और काफ़ी मिलदार जो पहुँचे हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम, हम भी शो से जुड़ गए हैं, और क्या हाल है आपका? और सरफरोज अली जुड़े हुए हैं गोपालगंज से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं श्री भानवी सुंदरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है बोल बोले ए दीवाने दिल, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, ए दीवाने दिल। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि गीत सुनवाने के लिए भारती मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यभान सिंह वे सुंदरी घुरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है नाइस सॉन्ग मैम, जिनका भी गाना है मेरे तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सर फिरोज जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: मधुसरिया से बोल रहे हैं राजकुमार
0: जी। जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है भोजपुरी पगले बना दे।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सभी दोस्तों को।
0: तो चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 90.4 एफएम में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशाद अली मुरादाबाद से लिख रहे हैं कि पप्पू ये लड़की बहुत सुंदर है। चिंटू, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। पप्पू, क्या पप्पू ये लड़की बहुत सुंदर है। चिंटू, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। पप्पू, क्या नाम है। चिंटू, यह बैंक में काम करती है, इसके अकाउंटर पर इसका नाम लिखा है।

चालू खाता। और काफ़ी मजेदार लाइन पहुंची हुई है संसाद जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, और जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, कैसी हो आप, एक सॉन्ग सुनना है और गाने की फरमाइश किए हुए हैं। और जो अभी हम गाने की फरमाइश किए हुए हैं वो गाना चलेगा क्या? तो जी बिल्कुल चल सकता है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, क्या मौसम आया है, गाना मुझे सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को हमने थर्सडे को ही प्ले किया था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है आप का और आपके पूरे टीम का, आई होप सो सब के वो ठीक हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी हम लोग भी ठीक हैं। और मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी, और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो लिख रहे हैं हेलो भारती मैम नमस्ते प्रणाम, राजू सोनी हरपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है मनीष पांडे जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं हेलो जी नमस्ते, क्या हाल चाल है? तो जी मेरा हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है, और गाना सुनना चाहते हैं सत्यम जी। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करेंगे, और गाने की बोल है सांसों की माला। तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और आप सबको मैं बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिज्यूम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे प्रोग्राम के सारे नंबर को नोट कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और इसी के साथ यहां हमारे पास मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, थैंक यू। और यहां मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज पहुंचा हुआ है सानिया सैफी जी की तरफ से, लोग जो कि लिख रही हैं नाइस सॉन्ग सांसों की माला पे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि का हो दिलीप भाई का हालचाल बा, और दिल्ली में बारिश की का हालचाल बा, और का हो, और लिख रहे हैं कल तो हमारे यहाँ बहुत बारिश हुआ और बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। उमा शंकर सिंह की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। अवंतिका सिंह, अरिजीत सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम, मैं विशाल पांडे और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही हैं कि

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आप सबकी दोस्त RJ भारती। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि थैंक यू मैम मेरा गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं संजय प्रजापति जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि दादी को पढ़ते देख पोते ने अपनी माँ से पूछा, माँ दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? माँ बेटा ये फाइनल ईयर की तैयारी कर रही हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है दिनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय, और गाना सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश को मैं आज पूरा नहीं कर सकती, एक दिन पहले ही मैंने आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नसीम अंसारी उत्तर प्रदेश से प्रणवना कुशीनगर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मेरी भी फरमाइश से पूरा कीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि आई लव रेडियो रिमझिम गोपालगंज और रेडियो रिमझिम मेरा फेवरेट चैनल है तुझी, और नेक्स्ट टाइम माय सॉन्ग प्लीज़ एक्सेप्ट माय सॉन्ग कंप्लीट कीजिए। और तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को हम लोगों ने थर्सडे को प्ले किया था, इसीलिए मैं आज फिर से प्ले नहीं कर सकती, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आपकी बारी आएगी तो ज़रूर आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि कब तक मेरा गाना बजेगा। तो जी मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने को हम दोपहर न्यूज़ के बाद पूरा करेंगे। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। ना जी, रोगो गाना बाजी हो इसे तो कॉल उठाई नहीं है।
6: तो खाना खाई लेवन क्या खाई लेवन?
5: ना ना, अब लंच हुई।
6: अच्छा।
5: नाम भी बता।
6: सब ठीक बा?
5: हाँ हाँ, हमारे तो सब ठीक बरवा। बताई नाम भी बता दी ताकि सबके पता चले कि बोल जानी। जी जी, और कौन सा गाना सुने बरवा?
6: मैंने सुना दी सावन के महीने।
5: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: गाना आपको जितना दे दिया रिंजे मार दे आज सोता दो से सबके साथ।
5: ओके, तो आपका गाना हम प्ले करते हैं।
6: जी मैडम जी, नमस्ते
5: जी। रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी

अभी हम लोग सुन रहे थे नेहा जी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना। सावन का महीना आया है और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते प्रणाम, का हाल चाल बाजी अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से, और लिख रहे हैं मेरी भी एंट्री करा दीजिए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैम मैं न्यू फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है। लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल है लॉलीपॉप लागेलू पवन सिंह की आवाज़ में, गाना विवेक कुमार शर्मा बिहार आलमपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी के आपके हम गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ विवेक कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ जिनके भी गाने को मैंने पूरा नहीं किया है, फिर दोपहर न्यूज़ के बाद उनके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। तो फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे दोपहर न्यूज़ के बाद, तभी आप सभी इस गाने को

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
4: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं।
3: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
5: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा न आए।
3: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
8: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
7: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
9: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
7: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
11: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
12: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
11: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
7: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
13: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभव का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
7: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
15: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
14: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता में अब हम सुन रहे हैं गीत। कलाकार हैं अनूप कुमार। सबसे पहले सुनिए गोपाल सिंह नेपाली की रचना है।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
7: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857-88291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006-67231।
5: कॉल कीजिए 9006-67231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आप तोड़ दो वो कसम जो आपने खाई है, कभी कभी याद करने में क्या बुराई है, आपके याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता, आपने दिल में जगह जो ऐसी बनाई है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा, और एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, आज हमारा बर्थडे बा और गाना सुने के बा, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं नया पारा विरई से प्रमोद कुमार।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना वीर जरा का ऐसा देश है मेरा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ मनोरमा दी बजा दीजिए, संध्या जी का गाना बजा दीजिए। तो जी बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज भर रिचार्ज है प्लीज़ गाना बजा दीजिए। और जी बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि आपके गाने को प्ले कर दिया जाए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है ऐसा देश है मेरा। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह उत्तराखंड से। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि

रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून मैम, हम टुनटुन यादव विलेज पटरा पठानपट्टी पोस्ट पटरा जिला गोपालगंज बिहार से वानी और हमरो गाना सुने के बा और सूरत गुजरात से रेडियो रिमझिम सुना तानी हमके गाना सुने के बा और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं रास्ते में है उसका घर और काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
5: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277166598। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मैम मनोरमा मैम नमस्ते जी, कैसे हैं आप। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी एक बार फिर से हाजिरी लग चुकी है। और मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं जय जोहर भारती जी, बहुत मज़ा आ रहा है गाना सुन के, ऐसा गाना सुनाया करो नया पारा भी रही जिला बलोच छत्तीसगढ़ से जी लीला साहू जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पूछे हुए जो कि लिख रही है कि मनोरमा दीदी का हलवा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी जो कि पिपरा नारायण के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग गई। और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी। तो जी मेरा ठीक है, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि उर्फ रानी मुखर्जी जी, तो आप लोग मुझे याद किए और मैं आ गई। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे फरमाइश पहुँची है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मैं विशाल पांडे और मुझे भी गाना सुनना है। लिख रहे हैं कि प्लीज़ गाना बजा दीजिए, कब तक बजेगा। तो चलिए विशाल जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिना देरी किए, और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की ये खूबसूरत सा सॉन्ग। और गाने के बोल है अखिया में नासाबा।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल थे अखिया में ना सवा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मनोरमा दीदी, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी जी जो कि पिपरा नारायण की रहने वाली हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि पंचायत चुनाव, और लिख रहे हैं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आप में लड़कर दूसरे को बादशाह जरूर बना देता है। कड़वा है मगर सत्य है, संगठित रहें एकत्रित रहें। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं उत्तम सोनी जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि गाना सुना दीजिए मनोरमा जी, गाना आज। और मैसेज करने वाले हैं लीला साहू जी जो कि नए पारा भिराई से हैं, तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रही हैं कि मैम मेरा गाना प्ले कर दीजिए, और आज भर मेरा रिचार्ज है तो प्लीज़ बजा दीजिए। और गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: मैम सलामकुम, मेरा गाना सुनना, हमको तुमसे प्यार है। मैम आप कैसे हैं, आप खाना खा लिए?
0: और बहुत ही खूबसूरत आवाज में वॉइस पहुंची हुई थी। और मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए कि आप कैसी हैं। और चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-023-35-8-76 या 95-999-27-982।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:21 हो गए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि, फिर आज कोई गजल आपके नाम ना हो जाए, कहीं लिखते लिखते शाम ना हो जाए, कर रहे हैं इंतजार आपकी महफिल का, इसी इंतजार में जिंदगी तमाम ना हो जाए। और लिख रहे हैं कि मेरी प्यारी आरजी मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी, आपका स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप लोग मुझे इतना प्यार दिए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि मेरे मैसेज पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, तो जी सबके मैसेज को बारी बारी से देखा जा रहा है और सबके गाने को भी हम प्ले करेंगे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, नमस्कार प्रणाम बा मनोरमा जी, हमू आ गई बानी, हमरो हाजिरी लगा दी तनी लेट बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बराबर भी, और भी हाजिरी लग चुकल बा, और मैसेज करेला बानी सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, मैं यशोदा जी, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ते हैं हमेशा और अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि, मनोरमा मैम जब तक जिया करेंगे आपको तंग किया करेंगे, अगर गलती से भी हम मर भी गए तो यमराज के फ़ोन से SMS किया करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि, पाजी UP 54 से, और लिख रहे हैं कि, मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा मनोरमा मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, राधे राधे जी, मैडम जी मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और लिख रहे हैं कि, मैं बलोच छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है लिंक वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: मनोरमा जी नमस्कार, साध मास्टर ग्राम धना थाना नासिर मिलर हताश बिहार से, मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है गुमराह, तेरे प्यार के सलाम ओ सनम, मेरी जान तेरे नाम ओ सनम, और सुनने वाले सभी रेडियो रिमझिम को सुनवाना चाहता हूँ, और हम लोग धनाव से रोशन तिलन में सुनेंगे, सुनवा दीजिएगा। ओके मैडम, धन्यवाद।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी, मैं पिंकी दिल्ली से और मेरा भी एक गाना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि ये सॉन्ग आपको और भारती दीदी को और धनेश मिश्रा जी को सुनाना चाहती हूँ। तो जी, आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम गाना सुनाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं खुशबू कुमारी पीपरा सिवान से, और मुझे भी गाना सुनना है, प्लीज़ दीदी बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ दीदी, मेरा नाम संध्या है और मेरे भी एक फरमाइश है, तो प्लीज़ बजा दीजिएगा। और फरमाइश क्या है, चलिए वॉइस के माध्यम से और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: हाय दीदी, मैं हूँ संध्या कुमारी, मुझे एक गाना सुनना है, तो हर कमर है कि मटका हो, मारा तो कितना झटका हो।
0: चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की सॉन्ग।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696 पे कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि तहार नाम लेत भोर से साज करीला, हर पल तोहरा के अपन पास देखीला, जितना बेर सांस ना तू लेह थकबू ओह ले अधिका हम तोहके याद करीला। और लिख रहा है मेरी माँ, और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह जो कि जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ओ नहीं आती पर अपनी निशानी भेज देती है, ख्वाबों में दास्ता पुरानी भेज देती है, उसकी यादों के पल कितने भी मीठे हैं मगर कभी कभी आँखों में पानी भेज देती है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जय किशोर प्रसाद जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहती हवाओं से आवाज़ आएगी, हर धड़कन से फरियाद आएगी, भर देंगे आपके दिल में इतनी मोहब्बत, जब भी सांस लोगे तो हमारी याद आएगी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी चौहान से, और काफ़ी खूबसूरत सा शायरी थी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अजीत कुमार साहब उर्फ हिटलरी बिहारी हरियाणा से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, आज हम लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं बलोद छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी, और लिख रहे हैं कि गाने के बोल है जाने कहाँ गए वो दिन कहे थे, प्लीज़ बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम जी, नए पैरा भी रही से प्रमोद कुमार साहू, और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत दिल से शुक्रिया गाना सुनाने के लिए, और लिख रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं मनोरमा जी। तो अच्छा ये बात है, मैं तो बहुत दिनों से शो कर रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि शमशाद अली मुरादाबाद से, और लिख रहे हैं कि आप रात में सो रहे हो और कोई अचानक से आपके पैर पकड़ ले तो डरना मत। ओ भूत नहीं, भूत का बड़ा या छोटा भाई हो सकता है, सरपंच पद का उम्मीदवार भी हो सकता है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं शमशाद अली जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि इश्क बात तो छुपावे लुका है, हमरा के देखे लू तो मुस्कुरा लुका है, और जौन दिल में बाव कह द करे जा, ऐसा नज़र से हमके मुआवे लुका है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण से, अरे राज बाबा की नगरी से, और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, और मेरा भी गाना चला दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी मैं पिंकी दिल्ली से, और मेरा भी एक गाना है सुना दीजिए, और लिख रहे हैं कि ये सॉन्ग आपको और भारती दीदी और धनेश मिश्रा जी को सुनाना चाहते हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, ये बेहद सा सॉन्ग।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:51 हो गए और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए ढेर सारा लव यू, और लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पिंकी जी गाना बजाने और मुझे भी सुनाएं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय जोहर भारती जी, मुझे भी गाना सुनना है, और लिख रहे हैं कि मैं लीला साहू ग्राम भिरई से, और लिख रहे हैं कि मनोरमा दीदी मेरा भी गाना बजा दीजिए, और गाने के बोल है मैया ये सौदा ये तेरा का नहीं है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि गाने की बोल थी मैया यशोदा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत दुख के साथ आपको बाय बाय बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है जाने की। आपकी जीत तो बात तो सही है, और मैं आप सभी को बता दूँ कि आप लोग के साथ आपके गाने को प्ले करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत कम रहता है। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रही है, धन्यवाद पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को गाना बजाने के लिए लीला साहू जी की तरफ से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो जी, टाइम कम होने की वजह से आपके गाने को हम प्ले नहीं कर सकते। और यहाँ पर वॉइस के माध्यम से कुछ पहुँचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है।
1: गाना बहुत अच्छा लगता है बजाइनी। हाँ, तो सबसे पहले रहुआ बताई कैसा लगल है रहुए गाना, रहुए खातिर गाना रहला।
0: तो गाना बहुत ही खूबसूरत था, आई बताएं बहुत अच्छा गाना था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यार यहाँ पे। तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप WhatsApp, Insta और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा WhatsApp नंबर है 98527-88291। और अगर कॉल करने के लिए, अगर कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप 72-77-16-65-96 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मैं लूँगी आप सभी से विदा। और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग, जो कि अजीत जी की फरमाइश थी, जो कि लिंक के माध्यम से पहुँची है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग से लेंगे विदा। फिर मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9905547644।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रेमजम।
12: सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
6: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
6: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
6: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
9: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो एमजेम। सुनो दिल।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
12: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
11: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
12: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
11: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
12: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
11: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज़ जैट पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आ

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: आप कौन कौन मैम बोल रही हैं आप?
2: मैं भारती।
1: अच्छा जी, भारती भारती, अभी तो उनका नंबर था, आज भारती जी का नंबर लगा है।
2: जी
1: क्यों इतना लेट से? क्या घर चली गई थी क्या?
2: नहीं तो
1: वो दिन दो तीन प्रोग्राम वो दे चुके। वो क्या नाम है उनका?
2: मनोरमा जी।
1: मनोरमा जी, तो फिर आप जो है इतने दिनों से कहाँ? हम तो समझे यहीं पे है, लेकिन इस प्रोग्राम में आप नहीं जुड़ती है ना? और पहले जैसा भारती जी नहीं है, बदल गई है?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बदले नहीं है। जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना कर लेता है।
1: कर लेता है। पहले आवाज भी बहुत आपका सोलो था, पहले बहुत कुछ था। अब तो मैं अपना प्रोग्राम में आप गाना भी गाती है, औरतें जो है बड़ी तारीफ कर रही हैं कि मैडम जी आप गुनगुनाती हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। आप पूछती हैं कि आप गाती हैं कि नहीं, हाथ नहीं और शर्म से झुक जाते हैं लोग। तो एक सुना था कि वो कह रहे हैं कि आप गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा हम गुनगुना लेते हैं कभी। ऐसा सुनने में हमको मजा लगा आपका प्रोग्राम का, तो सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप गुनगुनाते रहिए अपने प्रोग्राम पे भारती जी।
2: बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ।
1: तो भारती जी आज कौन सा गाना सुनवाइएगा?
2: बता दीजिए।
1: आपने बता दीजिए, कोई गाने का बोला आप ही बता दीजिए कि मैं ये गाना आपको सुनवा रही हूँ। बोलिए, हमारे लिए मतलब हमारा उम्र जो है तो ज्यादा है ना, 50+ है मेरा, तो अब उसके हिसाब से बोलिए कौन गाना सुनवा रही है। आप बड़ी गुनगुनाती है, इसके लिए हमको पूछना पड़ा, कहना पड़ा। बोलिए, आज आपको घेर डाले हैं गाने के पीछे। अच्छा, कोई गाना है धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, ऐसा कोई गाना है?
2: हाँ है।
1: एक महावीर जी है हमारे कपूरपुरा बाजार पे, वो कहते हैं कि ये गाना का रिक्वेस्ट किए ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। थोड़ा वो तो माइंड शॉर्ट आदमी है वो, और बराबर कहता है वो हमसे ये गाना सुनवाइए ना। बराबर रेडियो जो है कान पे लगा कर रखता है, दुकानदारी करता है और पूरे दिन रेडियो बजता है उसका।
2: जो
1: भी हो ये गाना जो है ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिए, गाना सुनवा दीजिए। मोहबी जी खुश हो जाएंगे गाना सुन के, कहेंगे वाह वाह मेरा गाना बजा।
2: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वही गाना तो बजा दीजिए मैडम।
2: हाँ, और गाना उन्हीं को डेडिकेट करेगा।
1: बस बस आपको अभी तो हम महावीर जी को डेलीकेट करेंगे और कहेंगे का हो महावीर जी, कैसा लगा गाना वहाँ हमारा बताइए, दुकान पर आए तो। हाँ, तो वही गाना सुनवा दीजिए।
2: ओके,
1: ठीक है, ओके, तो रख रहे हैं।
2: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या कर रही तुम?
1: ठीक बा, अपन बताएं।
2: बढ़िया बा, क्या होता?
1: बस रोबा सबसे बात होता।
2: और सब बताओ मैडम।
1: और सब पे ठीक बा, तब क्या होता अभी?
2: जुमा है, थोड़ा सा सफाई होता।
1: अच्छा जी, हाँ हाँ चलिए बढ़िया बा। तब कौन सा गाना सुनेंगे बा?
2: गाना नहीं है गाना, रब ना करे ये जिंदगी, रब ना करे ये जिंदगी, जिंदगी किसी को दगा दे, वही गाना चलेगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है
2: उससे पहले आपको, सुनने वाले सभी लिसनर को,
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: लाडली बोल रही हूँ नवादा से।
1: जी अब मुझे तो मालूम, चलिए फिर बढ़िया है।
2: तो चल रहा है अच्छा से।
1: हाँ,
2: चलिए ठीक
1: ठीक।
2: है। आप मेरा अपना नाम बता दीजिए थोड़ा।
1: मेरा नाम भारती है।
2: अच्छा, भारती भी आई है क्या? है
1: हाँ
2: मैं नहीं आई।
1: नहीं वो भी है।
2: चलिए ठीक है।
1: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते
2: हाँ,
1: रहिए।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू।
2: थैंक यू। सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
12: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
13: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
13: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
13: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
13: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
15: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
16: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
3: हेलो
17: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीन 90.4 एफएम में।
17: नमस्ते मैम।
3: जी नमस्ते, कैसे हैं मैम?
17: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: हम भी ठीक है
17: जी। नाम बता दीजिएगा अपना।
3: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
17: जी जी, तो क्या हो रहा है अभी?
3: अभी तो कॉल लगा रही थी।
17: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: तू बसी हो कर कर अंदर मां ढूंढते रह गए मंदिर
17: में। जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
3: जी मैम, आपको और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजी को और मेरा छोटा भाई और को भी।
17: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
3: जी मैम,
17: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
3: जी।

0: हेलो
1: करना
0: जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
1: में। जी,
0: क्या हाल चल रहा?
1: बिल्कुल ठीक हुआ। कैसे बानी?
0: हम तो ठीक बानी
1: जी।
0: क्या होता है?
1: अभी तो क्लास में थोड़ा सा टाइम निकाल के रोवा से बात कर रहा था।
0: काफी अच्छा, भोजपुरी बोल लेता नहीं रोवा?
1: कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बोली।
0: ऐसे ही कोशिश कर रहे हम, बिल्कुल अच्छा से बोले। अभी तक काफी अच्छा बोला
1: जी। हम सोचने की आज के लास्ट टाइम हो गए, 12 एक्टिव हो गए, अब हमारा फोन नहीं लगा तो लाइन में हम रही तो आपको रिसीव कर लेंगे।
0: जी जी। अभी
1: पुराना माई फिल्म हो जाना सुरेश वाडर के बाद।
0: गाने के बोल बता दो।
1: गाना के बोल है चलल जाला भौजी, इस तरह के बोल है चलल जाला हो भौजी हमारा, इस तरह के कुछ बोल
0: है।
1: गाना बहुत अच्छा बात। सुरेश वाडकर और कौन एगो लेडी सिंगर है, नाम याद नहीं थे।
0: चलिए कोनो बात ना, देख के बजा दो।
1: जी जी जी।
0: गाना
1: के सुनाई हम सुनी और जितने भी रेडियो रंजन के लिसनर है सभी सुनाता हूँ।
0: जी जी। और गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
3: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 91.4 FM में।
9: जी नमस्ते, प्रणाम आजादी राधे।
8: नमस्ते, प्रणाम आजादी राधे।
9: अस्ते अस्ते काय बोलता नहीं,
8: का हो गई बा आज रुआ
9: और घर फंस गई बा
8: कहे की का हो गई, काहे से बोलता नहीं,
9: पहचान का
8: नहीं है कोई बनी हुई सब फंसा था का।
9: और क्या बोले ला, दिए पे कल भूख रही ना, तो फल फलहारी ज्यादा खा ले बनी, वही क्या सर। आप बताई, नाश्ता हो गया?
8: नाश्ता तो हो।
9: और सुनी ना, आज की रिकॉर्डिंग जितना चलल बाबा मेरा खाली रावरे फरमाइश वाला रवा पसंद की, एक दो गाना अपना पसंद से लोग सुने बनी
8: कहते हैं लोग की रवा बहुत दिनों से बचत आ नहीं, रवा अपना पसंद से बजाई बजाई।
9: और वही में तो कसर हम पूरा कर ले रही और गाना बहुत अच्छा सेलेक्ट कर ले रही और बहुत अच्छा लग रही जी,
8: एकदम बिल्कुल रवा पे सूट करे वाला गाना सूट करके डल ले रहा हूँ।
9: हमके पाता रहे हो गाना के लाइन हम समझ चुके रहे सर के बारे में अगर हम बोलबो करे तब पूरा दिल से बोले मैं से कहे सो तो और खास करके वहां के जनता नहीं जब वो संडे के दिन आवे नहीं तो इतना धाकड़ भोजपुरी बोले नहीं कोनो कोनो शब्द ने बहुत काफी अच्छा लगे। और हाल में ये संडे के दिन एगो बात बोलत रहे कहत रहे जे एगो चाना अकेले भाड़ ना फोरी
10: जी जी तो बात है
9: सुन के काफी अच्छा लगे तो आज एगो छठ के सॉन्ग सुना दी।
10: बिल्कुल बता दे कौन सा
9: जोड़े जोड़े फालवा पवन सिंह जी की आवाज में।
10: अच्छा अच्छा
9: और पूरा छठ के माहौल और नवरात्रि के माहौल इस सब हमने के मुंह पर आ रहा बा। और बताई नवरात्रि रवलो के गाँव में कहिया चढ़ाता
10: संडे कहीं ना चढ़ाता।
9: हाँ संडे की भी चढ़ता। और दी ये गाना सब लोग के सब हरे रही रानी की तरफ से का
10: बिल्कुल रेडियो टीम से मैं कॉल करनी है खाती बहुत बहुत धन्यवाद
9: बाय
10: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ, सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ, हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज से बात कर रहे हैं।
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी, हम लोग का भी ठीक है।
0: चलिए मैम, ठीक रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैडम, गाना सुनना चाहते बंधन फिल्म का, जो हिंदी गाना है बंधन फिल्म,
1: हाँ
0: सूरज कभी गगन से चंदा कभी दूरज किरण से।
1: जी, है।
0: हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम, सुनवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको और रेडियो मिल के जितना हमारे परिवार है उन लोगों को,
1: जी
0: और हमारे दोस्त लोग हैं सुफी आलम और मिराज आलम, यीशु पन्नी, जितने शर्मा, गोविंदा शर्मा, मोहम्मद रूफ, बस इन्हीं लोग को सुनवाना चाहते हैं।
1: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
10: नमस्ते दीदी
9: जी। नमस्ते,
10: विकास कुमार, हिंदापुर।
9: जी जी, कैसे हैं आप?
10: बढ़िया बानी, आप कैसन बानी मैडम?
9: हम तो ठीक बानी।
10: अच्छा, सब नाश्ता वास्ता हो गई बेटे?
9: हाँ, नाश्ता हो गई बा।
10: अच्छा, सब और सब बताई, मौसम मौसम कैसन हटे गोपालगंज में?
9: अभी तो गोपालगंज के मौसम बढ़िया बना था वे।
10: अच्छा, संडे के दिन तो नवरात्र चढ़ जाए ना?
9: हाँ,
10: माता जी के माता जी आ जाए धरती पर।
9: बिल्कुल आए
10: परकट से निकल करके।
9: तब और सब
10: तब रौरा पूजा उजा करी ले कि ना नवरात्र में भूखी ले?
9: पूजा करे नहीं, भूखे नहीं, बस दूगो अभी भूखे नहीं, पूरा ना भूखे देला लो कि जाऊं के बाहू हुआ तब परेशान हो जाए।
10: अच्छा दुए को भूखी ले? अच्छा ना वही में ड्यूटी नु करे बनु सही बात बटे। और काम धाम नहीं था तो मैडम वही करिए बैठल बा मशीन वशीन बंद बटे तो।
9: अच्छा छुट्टी बा का?
10: ना छुट्टी ना कंपनी में हम भी बैठल बटे एकदम।
9: चलिए बढ़िया बाबे आराम करे के मिलत है और क्या चाहिए।
10: काम धाम रहेला तब न थोड़ा मन उन लागत रहेला ना।
9: अच्छा कब कब आराम करे के चाहिए, ज्यादा काम ना करे के चाहिए
10: भाई? दो चार दिन से खाली आ करके बस बैठना ही जाई जाता है कंपनी में।
9: कौन बात है
10: 8 घंटा
9: हाजिरी
10: हाजिरी बोना था 8 घंटा के। सब और सब बताई घर में सब सबको सही है ना?
9: घर में सब क्यों ठीक बा?
10: मेहनत करके बहुत लगाओ जला ना फोन रोलो से बात करे।
9: जी जी क्यों क्यों कहे नहीं लो कि हम इतना बार लगे नहीं है सुन के बुझाला कि कितना मेहनत करे के पड़ा था।
10: नहीं हम ही कबो कबो लगा दिले मैडम रोरा से क्या बताई 40-50 साल लगाई ले तब ये खाली लगेगा।
9: अच्छा
10: क्या मैंने 49 बार लगा तो 50 मैंने 50वां हाल ही में लागी रहा और फोन। अब बुझ जाए कि कितना देर वेट करे के पड़ेगा।
9: तो बता दी कौन सा आज गाना सुने?
10: आज कौन सिंह के भक्ति गाना सुने?
9: गाना के बोल बता दी।
10: निमिया के छाओ में 9 दिन रहलू माई संग हमारे गाँव में, यही वाली मैडम।
9: जी जी और गाना क्यों के सुनेबो करे?
10: सबसे पहले आपके सुनवाई आप लोग के जितना रेडियो रिव्यू सुनने वाला हो सबके।
9: जी गाना तो बहुत अच्छा बा, सुने तो सबके सुनी, अच्छा गाना बा।
10: दिल छू दे वाला गाना बा एकदम। दसवीं के दिन ना बाजेला ना मैडम, लेकिन शुरुआतों में बाजेला।
9: कोनो बात ना, पहले बुलावल तो जाओ माता जी के ओकरा बाद।
10: जरूरी बटे।
9: चलिए ठीक बात, अब और गाना प्ले करता नी।
10: अच्छा
9: सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
10: ठीक है नमस्ते दीदी।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
1: नमस्कार, हम मधु सौरिया से बोल रहे हैं, राजकुमार
0: जी। जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है।
0: तो क्या कर रहे हैं अभी?
1: अभी क्या कर रहे हैं, बाजार में कहाँ काम चल रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं?
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है,
0: बता दीजिए। गाने की बोल बता दीजिए।
1: गाना है कि साइकिल में साइकिल लड़ाई बबुलिया है।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: रिंजिम सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द। अरे तो

0: डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे, इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: हेलो
13: हेलो,
14: अस्सलाम वालेकुम मैम।
13: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 FM में।
14: कैसी हैं?
13: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
14: नाखून हो गया?
13: जी, मेरा तो हो गया है।
14: गाना सुना दीजिए।
13: बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए पहले अपना।
14: अफसोस सी पठानपट्टी से।
13: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: हिंदी गाना नहीं है, इश्क दीवानी। वही हिंदी गाना बता दीजिएगा, इश्क दीवानी लड़ गई, वही है।
13: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
14: जिया को, साइन अपी को, आलिया को, सलमान को, रोशनी को और सबको, रेशमा जी को।
13: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 91.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे इसमें बोलते हैं पठान पटी से।
1: जी जी कैसे बानी रहुआ?
0: ठीक बानी हम अपन बताई।
1: हम लोग ठीक बानी सर।
0: ठीक बानी रहुआ हम नरमा में।
1: हम भी ठीक बानी।
0: नाश्ता पानी सब हो गया?
1: हाँ
0: तो ठीक रहा था ना?
1: बिल्कुल एकदम ठीक रहा था।
0: काय मेहराइल बोलता नहीं तुम्हें दिक्कत रखा जी?
1: ना जी, कबो कबो बोलत बोलत ना बोले के मन करेला।
0: तो पानी लेके आई?
1: पानी रख ले वानी सन।
0: रख ले वानी पीनी है कि ना पानी होनी?
1: पीए वानी सन, पानी ना रहो तो कैसे रहो।
0: ठीक है कहा था नहीं। अरे घर पर में सबको ठीक बा?
1: हाँ सबको ठीक है।
0: बाहर घर गाना गाओ तो नहीं आए? बेईमानी करता नहीं?
1: बेईमानी नहीं की करत तो एक दिन तो सही में कभी मन पहले रहुए था वो भोजपुरी एक्सप्रेस में।
0: भोजपुरी गाना था, रितेश पांडे गाना था ना?
1: हाँ लिया वो खबर ही।
0: तो भवानी को गाना सुनाई?
1: बिल्कुल सुना रही।
0: सुना रही जब चालू हो जाए तो सुने नहीं तो पहले ही बता देना की बजा दू गाना। और सब बताई?
1: और सब तो ठीक बावे। तब खाना पीना हो गई बा?
0: खाना नाश्ता हो गया, खाना हो गया, दोनों हो गया।
1: हाँ टाइम भी तो होता है एकदम लेट हो गई।
0: मतलब खाना बना दे ले वाली जन नहीं? नाश्ता पंदा सुन रही भाई ने।
1: तो बताई कौन सा आज गाना सुने?
0: गाना सुने एक बार, हिंदी गाना सुने एक बार।
1: बता दी।
0: हम अपनी मोहब्बत की इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे।
1: और गाना सुनाहूं के बा?
0: हाँ सुनाओ के बा। रौरा बानी, मुनारमा में बानी, रानी बाड़ी, करिश्मा बाड़ी, उनका भाई बड़न, निसार बड़न, और जितना लोग सुना था सब फिर सुनी रेशमा की तरफ से जाना।
1: बिल्कुल गाना प्ले करता नहीं
0: जी? ठीक बा
1: सुनते हैं रेडियो रमजी 90.4 FM।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
5: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
5: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
5: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो हेलो मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: अस्सलामुअलैकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम,
11: ठीक है
10: जी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: मैं ठीक है।
10: आपका नाम बता दीजिएगा।
11: रोशनी।
10: रोशनी,
11: हाँ।
10: कहाँ से?
11: पेठान पट्टी से।
10: अच्छा जी,
11: और सब बताइए?
10: और सब ठीक है।
11: आस्था हो गया?
10: जी बिल्कुल हो गया है मेरा। आपका हो गया?
11: हाँ मेरा हो गया।
10: तो कौन सा गाना सुनना है?
11: हेलो, तुमको मंगा दीजिएगा
10: जी।
11: हाँ
10: गाना बता दीजिए मुझे।
11: कोई भी बता दीजिएगा भोजपुरी गाना।
10: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
11: पहले सुनाएंगे आपको और मेरे अम्मी को और रानी चाची को और जिया को और तारा को और साहिन को और रेशमा जी को।
10: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: जय भवानी, मैं बद्रीनारायण मुनि बोल रहा हूँ।
0: जी, कहाँ से हैं आप?
1: भलही से।
0: अच्छा जी,
1: तब सुनाइए, हाल चाल क्या है?
0: मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो ठीक है
0: जी ठीक।
1: हाँ,
0: अभी चाहिए?
1: अब हमको तो गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बताइए।
1: घोड़ा पे सोरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला।
0: जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: आपको, पूरा रिमझिम परिवार को, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सबको सुनाएंगे।
0: बिल्कुल
1: हेलो। हाँ
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है जी। जय भवानी।
0: जय भवानी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जय जी।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: ये नसीब इम्तिहान देती है मेरी, तेरी तरफ तरफ देती है मुझे, फिर से तो कभी तुम्हें दूर नहीं किया, ये बेवफाई का इल्जाम देती है मुझे। नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी मैं कमरान नसीब, फकरी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट सिवान से रहती है।
6: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: मैं भी बढ़िया हूँ, और सब बढ़िया घर में, और परिवार सब बढ़िया?
6: जी सब बढ़िया।
5: मौसम कैसा रहा है गोपालगंज का?
6: मौसम तो गोपालगंज का बढ़िया बन रहा है।
5: तो धूप हो रहा है, गर्मी है अभी मैंने।
6: धूप तो हो रहा है पर उतना नहीं, कभी धूप कभी छाँव।
5: हाँ नहीं यह तो हो रहा है, अच्छा धूप, गर्मी है, दिल्ली में, दिल्ली में गर्मी है, तो मुझे जो ठंडा नवंबर में चालू हुई है आपको लगता है?
6: जी अब हल्का हल्का तो ठंडा लग रहा है सुबह में और रात में।
5: हल्का हल्का ठंडा लग रहा है? आपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ,
6: तो
5: आपको बताऊंगा कैसा आया रिजल्ट।
6: कब तक आने वाला है?
5: 26 तक आ जाएगा, रिजल्ट आता है हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
6: भरोसा रखिए। जी जी बाकी सब ठीक है
5: और बढ़िया चलना चाहिए और क्या। तो हमको आज गाना सुना दीजिए।
6: बिल्कुल बता दीजिए।
5: फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये वाला फिल्म छलिया 1960 में आई थी।
6: ओके, और गाने की तो
5: ये गाना है दम दम दीदा दीदा मौसम दीदा दीदा, फिल्म में तो गिरा हाय अल्लाह, ये अल्लाह सुनकर मुकेश वाले
6: जी जी,
5: तो ये उसको सुना दीजिएगा। अब फिर आपसे मंडे को मुलाकात हो
6: जी जी, और गाने की
5: डेडिकेट। हाँ हाँ हाँ हाँ, डेडिकेट तो मैं भूल ही रहा था। सबसे पहले आपका बात सबनम सिद्दीकी, रामी हरकुआ, सदीना सब्बा सिद्दीकी, हेना हजरा, निशा सुकुनवा, रोशनी कुमारी, दिलीप राम, मुकेश, बरजू, भास्कर, जिजेंदर, उमर शंकर, समीर आलम, गुलाम हुसैन, और मैं लोग सुन रहे हैं तो सुनवाना चाहता हूँ आपका ये अहमद अली, बुरियत परवी, तो सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके नमस्कार
6: जी। नमस्कार, रेडियो रंजन में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जिनको गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, नाम बता दीजिए।
1: नाम
0: जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
1: साहिबा खातून कैथोले से बोल रही हूँ।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो मैलो से प्यारी है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको और रेडियो रंजन सुनने भी सही श्रोता को।
0: जी जी, तो आप ठीक है?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी जी, हम भी ठीक है,
1: खाना खा लेंगे।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हां कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
12: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
12: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
10: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, बहुत स्वागत है आपका। 90.4 FM में।
16: मैं तो कैसी हूँ?
15: जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
16: क्या हो रहा है अभी?
17: काम हो रहा है। काम कैसे?
15: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
17: अरिजीत सिंह का कलंक।
15: कौन सा?
17: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
15: हाँ हाँ
17: कलंक। कलंक
15: बिल्कुल बता दीजिए।
17: लेकिन आवाज उससे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
15: इतनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है।
17: उसे दो लाइन गा के बता रही
15: हूँ। बिल्कुल।

0: जी, काफी बहुत खूबसूरत गा रही हैं और बोल रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है।
1: नहीं
0: नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो
1: मिलता
0: तो अब अपने काम में लगी हुई हूँ। और गाना किसी को सुनवाएंगे
1: भी?
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते बालदेव सुंदरपुर।
0: जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बहुत ही गाना अच्छे सारे की आवाज सुना दिया है, थावे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थावे वाला कोई भी खेसारी की आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशी सोलव अद्वित अंगा
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं।
1: डाक वाला, किसकी चिट्ठी है?
2: देती हूँ।
1: अरे किसकी है?
2: एक और मुसीबत।
1: ओहो, क्या हो गया?
2: तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं।
1: ताऊ जी मर गए, अब क्या होगा?
2: होना क्या है, मुसीबत तो मेरी है। आए दिन मेहमान, अभी अभी मौसी दिल्ली दर्शन करके गई हैं और अब ताऊ जी आ रहे हैं।
1: मैंने तो कहा था दिल्ली ट्रांसफर कराने में नुकसान ही नुकसान है, तुम ही ने जिद की, अब जिसे देखो दिल्ली चला रहा।
2: मौसी तो फिर भी चौके चूल्हे में हाथ बटा दिया करती थी, मगर ताऊ जी तो महान बोर है बोर, उनकी बातें सुनते जाओ और खिलाते जाओ।
1: लेकिन अब होगा क्या?
2: होना क्या है, सोचती हूँ दो चार दिन को मैके हो।
1: भगवान, ऐसा कदम ना करना, तुम चली गई तो यहाँ क्या होगा?
2: तो बताओ मैं क्या करूँ?
1: करना क्या है, आओ बैठो, जरा सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या लिखा है ताऊ ने?
2: लिखा है वो आज दोपहर की गाड़ी से घर आ रहे हैं।
1: और हम आज सवेरे अभी इसी वक्त घर से जा रहे हैं।
2: जा रहे हैं, मगर कहाँ?
1: ओहो, घर से चलो तो सही, फिर सोच लेंगे।
2: और तुम्हारा दफ्तर?
1: आज दफ्तर से छुट्टी।
2: और खाना?
1: खाने की भी छुट्टी।
2: और पप्पू?
1: उसे भी छुट्टी, रास्ते में चलकर उसे स्कूल से ले चलते हैं।
2: फिर?
1: फिर क्या, पहले कहीं 12 बजे का शो देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, इंडिया गेट चलेंगे, फिर रात का खाना वाना खा कर आएंगे।
2: और मेहमान?
1: और मेहमान उनकी भी छुट्टी। वो ताला देकर वापस चले जाएंगे।
2: कहाँ जाएंगे ताऊ जी?
1: अरे भाई, उनके और रिश्तेदार भी तो हैं दिल्ली में, हम तो उनके दूर के रिश्तेदार।
2: और तुमने तो ताऊ जी को अपने सर पर चढ़ा रखा है, को वो अपने सगे रिश्तेदारों को भूल जाते हैं।
1: ओ चलो आओ, हम भी सब कुछ भूल जाए। चलो चलो
2: चलो, कहाँ चलेंगे?
1: पप्पू को स्कूल से लेते हुए पिक्चर हाउस।
3: आपका टिकट?
2: ये रहे हमारे टिकट।
3: मगर ये बच्चा कितने साल का है?
1: 6 साल का,
3: तो हॉल के अंदर नहीं जा सकेगा।
2: मगर क्यों, हमने इसका पूरा टिकट लिया है।
3: वो तो ठीक है बहन जी, मगर आपको नहीं मालूम 5 साल से ऊपर के बच्चे 12 बजे दिन का शो नहीं देख सकते।
1: ओ, ये कमबख्त तो मैं भूल ही गया।
2: मगर तुमने पप्पू की उम्र 6 साल क्यों बताई?
1: अरे तो क्या वो 5 साल से छोटा लगता है? और चलो चलो, कुछ और सोचने दो।
2: लेकिन भाई साहब, हम बड़ी मुश्किल में है, इस बच्चे को कहाँ छोड़े?
1: हम लोग इतनी दूर से आए हैं
2: और घर में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
3: मैं क्या बताऊँ साहब, मजबूरी है।
2: अब क्या होगा, सारा मजा किरकिरा हो गया।
1: अच्छा तुम घबराओ नहीं शांता, अपनी टिकट लो और हॉल में जाकर बैठो, मैं अभी पप्पू का इंतजाम करके आता हूँ।
2: जल्दी करना।
1: हाँ हाँ, तुम अंदर जाओ। आओ पप्पू बेटे, चलो।
4: आइए साहब, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ?
1: इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और अपने घर का पता भी नहीं बताता।
4: क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा?
2: पप्पू।
4: शाबाश, और तुम्हारे डैडी का नाम क्या है?
2: डैडी।
4: अरे भाई, नाम पूछ रहा हूँ, नाम देखो, जैसे मेरा नाम रामनाथ है, तुम्हारा नाम पप्पू है, और
2: मेरा नाम पप्पू है और डैडी का डैडी है।
4: डैडी का डैडी है। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है?
2: मम्मी।
4: कहाँ रहते हो?
2: अपने घर।
4: अरे भाई, घर कहाँ है?
2: स्कूल के पास।
4: शाबाश, और स्कूल कहाँ है?
2: घर के पास।
4: ओफो। अच्छा साहब, आप जाइए, हम पूछताछ करके बच्चे को उसके घर पहुंचा देंगे।
1: अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे इजाजत है?
4: जी हाँ।
1: अच्छा बेटे पप्पू, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आ जाते, तुम अपने इंस्पेक्टर अंकल के साथ ही रहना। अच्छा
2: अच्छा, टाटा
1: टाटा।
4: हाँ बेटे, बड़ा अच्छा बेटा है मेरा। क्या नाम है तेरा?
2: पप्पू।
4: और डैडी का नाम क्या है?
2: डैडी।
4: ओफो। अरे भाई, मम्मी का नाम क्या है?
2: मम्मी।
4: मम्मी का बच्चा, कहाँ रहते हो?
2: अपने घर।
4: ओफो, तुम्हारा घर कहाँ है?
2: स्कूल के पास।
4: और स्कूल कहाँ है?
2: घर के पास।
4: और घर कहाँ है?
2: स्कूल के पास।
4: ओफो, क्या मुसीबत है। अरे प्यारे बेटे पप्पू, जहाँ तुम रहते हो उस जगह को क्या कहते हैं?
2: घर, हमारा घर।
4: घर का बच्चा, बदतमीज। अरे रोता क्यों है भाई, रोता क्यों है? ओफो, अरे भाई चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मत रो, चुप हो जा।
2: मुझे भूख लगी है।
4: भूख लगी है? भोले, ओ भोले।
3: जी इंस्पेक्टर साहब,
4: पप्पू को दूध पिलाओ।
2: मैं बिस्कुट भी खाऊंगा।
4: बिस्कुट भी खाऊंगा? इसे बिस्कुट भी खिलाओ।
3: अच्छा साहब।
4: बेटे रो रो मत बेटे, चुप हो जा, बड़ा अच्छा लड़का है मेरा बेटा, चुप हो जा।
2: मैं बेटा तो अपने डैडी का हूँ।
4: ओफो, डैडी के बच्चे। अबे डैडी का नाम तो बता।
2: डैडी
4: डैडी डैडी डैडी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया।
3: ये लीजिए दूध, और पप्पू
0: ये लो बिस्कुट।
4: भोला, बच्चों को दूध पिलाकर इससे घर का पता दरियाफ्त करने की कोशिश करो।
0: जी साहब।
4: मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसके क्रॉस एग्जामिनेशन ने।
0: जी। अच्छा सर, हेलो पप्पू मास्टर, दूध पी लो है, और ये लो बिस्कुट भी। शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा लड़का है।
2: भोला अंकल, अब मैं खेलूंगा।
0: खेलेगा?
2: हाँ।
0: कहाँ खेलेगा, किससे खेलेगा? अब तेरे लिए मैं बच्चे कहाँ से लाऊं?
2: तुम जो हो,
0: तू मेरे साथ खेलेगा?
2: हाँ हाँ।
0: अरे तू मेरे साथ क्या खेलेगा?
2: चोर सिपाही।
0: चोर सिपाही?
2: हाँ, तुम चोर बनना।
0: मैं कांस्टेबल चोर?
2: हाँ, और मैं थानेदार बनूंगा।
0: तुम थानेदार? ओ, कहीं इंस्पेक्टर साहब सुन तो नहीं रहे। अच्छा फिर?
2: हाँ। फिर मैं तुमको पकड़कर थाने ले जाऊंगा।
0: थाने? अरे ये थाना तो है ही, तुम्हारा घर तो नहीं है।
2: अच्छा अच्छा, अब तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा।
0: अरे अरे, ये इंस्पेक्टर साहब का दफ्तर है, तू मुझे मरवाएगा।
2: अरे जा, डरपोक कहीं का। इंस्पेक्टर अंकल से डरता है? मैं तो नहीं डरता।
0: हाँ, तू क्यों डरेगा, तू कोई भोला कांस्टेबल तो नहीं है।
2: अच्छा अच्छा भाग। लो, मैं अभी अपनी फ्लैंग स्क्वाड बुलाता हूँ। भोला चोर पकड़ा गया, भोला चोर पकड़ा गया।
4: भोला भोला। यस सर।
0: ये क्या हो रहा है?
4: सॉरी सर।
2: इंस्पेक्टर अंकल, हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, भोला चोर बना था और मैं सिपाही।
4: ओह गॉड, किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा भोला, तुम जाओ।
0: जी साहब।
4: पप्पू बेटे।
2: जी इंस्पेक्टर अंकल।
4: देखो तुम्हें तस्वीरें देखो चुपचाप हैं।
2: अच्छा अंकल।
4: और मुझे काम करने दो।
2: अच्छा।
0: यो घर तो सुरेश का दिखा सा, और यू लंबर तो ठीक से है। आवाज दूसरे या घंटी बजाओ, बोरे दरवाजे पे तो ताला पड़ा था, कहाँ गए होंगे ये लोग भला? मेरी चिट्ठी तो मिल गई होगी, अंदर का तो कोई रास्ता नहीं है, देखूं। यू के ताला मजबूत दिखे सा।
4: अरे रे, ये क्या कर रहे हो?
0: ताला तोड़ू सू संतरी जी साहब।
4: ताला तोड़ रहे हो?
0: और के
4: तो मैं भी देख रहा हूँ।
0: और के देख रहा से भाई, तू
4: दिन धारे ताला तोड़ रहे हो मेरे होते हुए?
0: तो तेरा के काम, यहाँ जा तू अपना रास्ता ना,
4: और तुम्हें ताला तोड़ कर चोरी करने दो।
0: चोरी चोरी? तू मैंने चोर कहे से लू खबर तेरी डंडे से।
4: खबरदार, किसी हथियार का इस्तेमाल किया तो अभी सिटी बुलाकर सिपाहियों को बुलाऊंगा।
5: रे जा जा बुलवाल है, जो अपना घर से जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। हाँ, तू कौन से दखल देने वाला?
4: ये तेरा घर है।
5: और ये तेरे बाप का है?
4: किसके बाप का है? ये तो थाने चलकर मालूम हो जाएगा बच्चे।
5: हाँ हाँ, डाकी चल थाने, मैं भी तेरी रिपोर्ट करूंगा कि तू भले मानस पर तंग करा है। हाँ, चल थाने।
4: हाँ भाई शंकर, कैसे है?
5: ये नहीं आए इंस्पेक्टर साहब, मैं इनको लाया हूँ।
4: तुम कौन हो? सर, ये घर का ताला तोड़ रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
0: तो तुम ताला तोड़ रहे थे?
5: ये झूठ बोल रहा था इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा था। वो तो मेरे भतीजे का घर है।
4: भतीजे का?
5: जी इंस्पेक्टर साहब, आज ही मैं पलवल से आया हूँ दोपहर की गाड़ी से अपने सुरेश के पास। वो घर में थे नहीं, शायद कहीं गया हो आस पास। मैं मकान में कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि कम्बख्त ने धर लिया और लगा चोर चोर खाने। मैंने चोर बता, वैसे बताओ बताओ
4: तुम्हारे पास क्या सबूत है
5: ये?
4: कि तुम पलवल से आए हो?
5: के बात करो से इंस्पेक्टर साहब, यू पढ़ लो कार्ड, पढ़ो है? ये मेरे सुरेश ने लिखा से, देखो इस पर क्या लिखा, इसको पता भी लिखा से।
4: हाँ? लाओ इधर लाओ। ये तो ठीक है।
5: हाँ।
4: तुम्हें गलत फहमी हुई है शंकर।
5: मुझे चोर बता गया। इम बोल।
4: चौधरी साहब। हाँ। शंकर अपनी ड्यूटी दे रहा था।
5: हाँ।
4: आगे से ख्याल रखा करो शंकर। अच्छे बुरे की पहचान कर लिया करो। जाओ अपना काम करो।
5: यस सर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चालू सुन है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछनी से।
4: हाँ हाँ, पूछे।
5: ये छोरा कौन से है?
4: ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है साहब।
5: बिछड़ गया? मगर मैं तेरे से जानू सू। क्यों भैया? आ मेरे पास आजा आजा। के नाम से तेरा है? अरे यू छोरा तो मेरे भतीजे का था इंस्पेक्टर साहब।
4: पप्पू, तुम्हें जानते हो?
2: नहीं अंकल, ये तो कोई बच्चा उठाने वाला लगता है।
4: अरे
2: देखो ना अंकल, इसकी गठी में कितने बच्चे हैं?
4: इंस्पेक्टर साहब, इसे कहने दीजिए, मैं इसे घर पहुंचा दूंगा।
2: नहीं नहीं अंकल, मुझे बचाओ इससे, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा।
4: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत बेटे, जाओ बाबा जाओ, अपना काम करो। इस बच्चे को तुम नहीं जानते, खाम खा किसी दूसरे इल्जाम में न धर ले जाओ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चालू सू है मगर इस छोरे को मैं जानू सू। अच्छा राम राम। राम राम। क्या मुसीबत है, क्या क्या होगा? तीन बजने वाले हैं और बच्चे के बारे में कुछ पूछने तक नहीं आया।
2: मैं अंदर आ सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब?
4: आइए आइए।
2: मम्मी मम्मी। अरे पप्पू।
4: अरे ये आपका बच्चा है?
2: जी इंस्पेक्टर साहब। मम्मी तुम? अरे बेटी अब मेरे पास तो आ जाओ, आ जाओ, ये लो चॉकलेट खाओ, ये लो, आओ बेटे, आओ ना आओ ना। इंस्पेक्टर साहब ये यहाँ कैसे आया?
4: देवी जी, इस बच्चे को कोई साहब यहाँ छोड़ गए थे? हम तो खुद परेशान थे।
2: मैं भी बहुत परेशान थी इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है मेरा पप्पू सही सलामत तो है।
6: मैं ठीक हूँ मम्मी।
2: अच्छा बेटी,
6: इंस्पेक्टर अंकल बड़े अच्छे हैं।
2: अच्छा,
6: उन्होंने मुझे दूध भी पिलाया और बिस्कुट भी खिलाए।
2: अच्छा, अच्छा। मैं किस मुंह से धन्यवाद दूँ आपको?
4: नहीं देवी जी, ये तो हमारा फर्ज है।
2: अच्छा जी, धन्यवाद। पप्पू बेटे, इंस्पेक्टर अंकल को टाटा करो।
6: टाटा इंस्पेक्टर अंकल।
4: टाटा।
2: आ चले।
4: शुक्र है परमात्मा का, बच्चा अपनी माँ के साथ चला गया, अब कुछ काम कर सकूंगा।
1: मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: आइए आइए आइए आइए आइए।
1: वो जी मैं देखने आया था वो बच्चा।
4: वो पप्पू
1: जी?
4: उसे तो उसकी माँ अपने साथ ले गई, आपको नाहक परेशानी हुई।
1: परेशानी? मैं तो इंस्पेक्टर बड़े मजे में 12 बजे का शो देखकर आ रहा हूँ। खैर शुक्र है बच्चा अपनी माँ से मिल गया, मगर देखे ना आजकल के माँ बाप को भी कितने लापरवाह होते हैं।
4: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल।
1: अच्छा तो मैं चलूँ। नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: आ गए आप?
1: और पप्पू तुम?
6: मैं भी डैडी थाने में खूब खेलता रहा।
2: अच्छा चलो अब घर चले।
1: नहीं आओ कहीं से खाना खा कर चले, पूरी छुट्टी मनाई जाए आज।
6: लो हम पहुंच गए घर,
2: आज बहुत मजा आया।
1: सिनेमा देखा,
2: घूमे फिरे,
1: फर्स्ट क्लास खाना खाया
2: और मेहमानों से छुटकारा पाया।
7: छुटकारा?
2: ताऊ जी आप?
7: हाँ बहू, मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे उनसे भी तो छुटकारा दिला दो। तू इब बता डाकी, तू वहां थाने में क्या कर रहा था?
6: डैडी मम्मी पिक्चर देखने गए थे ताऊ जी, मैं थाने में खेल रहा था, मगर आप वहां क्या करने गए थे ताऊ जी?
7: तेरे साथ खेलना।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
3: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
3: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
12: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
13: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
14: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल से।

0: विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। और गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला संपन्न, अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्वजों का किया पिंडदान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,08,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मासिक पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। 1,237 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसको और भी समीक्षा करने की जरूरत है। अभी जिला स्तर पर या जो आपके पंचायत स्तर पर जो पंचायत विकास दिवस अंतिम रविवार को होते हैं, इसमें जरूर आग्रह करूंगा कि ये विशेष तौर पर एक ड्राइव चलाइए कि किनको किनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जो इसके पात्र हैं और उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, तो ये जरूर सभी जिलाधिकारी विशेष तौर पर इस अभियान में इस अंतिम रविवार वाले कार्यक्रम में जरूर इसको सुनिश्चित करें।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के साथ समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। श्री जोशी आज पटना में राज्य स्तरीय सेवा चित्र और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हम सिर्फ रट करके कैसे भी करके एग्जाम पास करके एक नौकरी लेने का लक्ष्य हमारा इस एनईपी में नहीं है। समझना चाहिए, कल्पना करना चाहिए, नया आइडिया लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये न्यू आइडिया देने वाले के काम, ये मकसद हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में विद्यालय कायाकल्प अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना सुधारने के लिए सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है।
3: अभी मिशन हमारा कायाकल्प चल रहा है और इस अभियान के माध्यम से भी तय किया कि बिहार के जितने स्कूल है हमारे, उसको हम ठीक करेंगे, उसकी व्यवस्था को ठीक करेंगे, उसकी रंगाई पोताई मरम्मती, वहाँ पंखा खराब है उसकी व्यवस्था को ठीक करेंगे, सारे चीजों का काम हमने शुरू किया है। और हम आपको स्वस्थ करते हैं कि मार्च के बाद आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा बदले हुए बिहार में इस स्कूल में पढ़ने के लिए बिहार के बच्चे आ रहे हैं।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण किया। यह आयोजन सेवा संकल्प अभियान के तहत किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत पटना के गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा के पास स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शैक्षणिक आधारभूत संरचना सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से बिहार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय PHU के 2 केंद्र खोलने का अनुरोध किया ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन देश को अस्थिर करने का प्रयास है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल देश में भ्रम पैदा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री नवीन ने कहा कि देश की जनता विकास के साथ है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है।

0: इन लोग की नियति बन गई है और कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र दिख रहा है।
1: दिल्ली में यातायात बाधित होने के मद्देनजर रेलवे ने आज दिल्ली से बिहार आने वाली 5 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। पटना में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के सदस्यों ने पार्टी प्रदेश कार्यालय से डाक बंगला चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल आय अकोई जाम पर छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में पटना में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोक भवन मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित मां सीता महिला विश्वविद्यालय को लेकर कोई भी निर्णय संबंधित हितधारकों से विचार विमर्श और उनके सुझावों के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर को निर्देश दिया कि बिहार विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही हितधारकों के साथ बैठक और आगे की कार्रवाई की जाए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला पितृपक्ष महासंगम आज संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। एक रिपोर्ट।
1: ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहे स्वधायै नित्यमेव नमो नमः।
2: पितृपक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने सुख शय्यादान और पिंडदान कर पितरों को विदाई दी। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पिंडदान नहीं कर पाते हैं वे अमावस्या के दिन फल्गु नदी के पवित्र जल में स्नान कर सभी पितरों के नाम से तर्पण और जलदान करते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के चलते आज मोक्ष नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया।
3: सनातन धर्म में हमारे पितरों का भी अत्यंत महत्व है। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं। आज बोध गया में सनातन धर्म की दृष्टि से धार्मिक स्थानों पर तीर्थों के प्रबंधन को लेकर के सरकार के माध्यम से काफी काम किए जा रहे हैं।
2: दक्षिण अफ्रीका से आए श्रद्धालुओं ने भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान किया। 16 दिनों के इस विश्व प्रसिद्ध मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने साथ गया जी के यादों को संजोकर ले गए। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: आज माल्या है, यह शारदीय नवरात्र के आगमन का प्रतीक है। कल कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्या के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माल्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बोधगया में आज से ईस्ट जोन इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 51वें वार्षिक सम्मेलन सिजिप्स 2026 की शुरुआत हुई। 3 दिवस से इस सम्मेलन में देश भर के लगभग 500 मनोचिकित्सक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। MBA सब्जीवाला के नाम से लोकप्रिय और जाने माने उद्यमी कौशलेंद्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने देश में स्टार्टअप को नई पहचान और सामाजिक स्वीकारिता दिलाई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कौशलेंद्र ने कहा कि आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है।
4: पॉलिसी जो है करीब 2,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है भारत सरकार के साथ और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिसे अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो 10 साल में आप 3 साल लगातार किसी भी समय आप चाहे तो टैक्स नहीं दे सकते, आपका टैक्स माफ है। आपको 9 लेबर लॉज, 3-4 एनवायरमेंट लॉ का कंप्लायंस का टेंशन नहीं है, वो आपको नहीं होता है। इंडिया की इकोनॉमी को स्टार्टअप से जो बड़ी कंपनियां निकली, चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो, ओला हो, वो इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है।
0: स्टार्टअप इंडिया और उद्यमिता के सफर पर MBA सब्जीवाला के साथ हुई इस पूरी बातचीत को आज शाम 7:52 से सामूहिक चर्चा कार्यक्रम में सुना जा सकता है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी समाचार रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। विकल्प शुक्ला के निधन पर आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी संवेदना जताई है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के पेनीपट्टी में सबसे अधिक 131.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। सभी वर्गों का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कठड़ा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर पर्णशाला में मध्याह्न भोजन खाने से 12 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बीमार बच्चों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी पेंशन की राशि। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, नई शिक्षा नीति रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। और गया जी का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला संपन्न। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्वजों का किया पिंडदान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:47 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर। डॉक्टर संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
6: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम।
11: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका।

0: का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंग।

0: मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
3: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
2: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU CCU NICU ECG X-ray अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
2: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर अंशु के तिवारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजलि तिवारी महिला रोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: OP हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर NH 27 साधु चौक गोपालगंज।
2: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023-3586 या 95-999-27-982।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल से।
10: इंडियन सिनेमा को मिल गया था उसका पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, लेकिन हम थे ओल्ड स्कूल यानी कि दिलीप कुमार के फैन, और हमें मिल गई थी हमारी सायरा बानो।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम।
10: सुनो दिल।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
6: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
7: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
6: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
7: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
6: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
7: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95-9997-27-982।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
0: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम।
11: सुनो दिल से।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
1: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
11: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विद्युत अपीलीय अधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप रजिस्ट्रार, निदेशक प्रशासन, प्रधान निजी सचिव, कोर्ट मास्टर, न्यायिक सहायक, फाइलिंग, लाइब्रेरियन और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। रिक्ति परिपत्र और अन्य शर्तों की जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर aptel.gov.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक कार्यकारी अभियंता सिविल 5 पद, कार्यकारी अभियंता सिविल 13 पद, उप सामग्री प्रबंधक 1 पद, कार्यकारी अभियंता 1 पद, लेखाधिकारी श्रेणी 1 पद, सहायक यातायात प्रबंधक श्रेणी ग्रेड 1 1 पद, सहायक संपदा प्रबंधक श्रेणी 1 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की इस वेबसाइट को देखिए www.mumbaiport.gov.in। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। स्नातक शिक्षु ग्रेजुएट अप्रेंटिस 50 पद, तकनीकी शिक्षु डिप्लोमा 30 और ट्रेड शिक्षु ITI उत्तीर्ण 135 15 पद। इन रिक्तियों को भरने के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट अथवा 10 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। वेबसाइट का पता है natas.education.gov.in। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से प्राप्त सूचना के आधार पर इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया फिलहाल निरस्त कर दी गई है। ये पद हैं अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, फार्मासिस्ट सहायक, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और चालक साधारण ग्रेड। नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई में प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इसके लिए योग्य और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद वेतन स्तर 10 में प्रारंभ में 3 वर्षों के लिए भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन के लिए नाविक भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट देखें www.spfo.gov.in। इंजीनियरिंग विभाग संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कार्यकारी अभियंता के 4 पदों को भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक जानकारियों के लिए देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट chandigarh.gov.in/public-notices। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में युवा पेशेवर उत्पाद अभियांत्रिकी एवं अनुरक्षण का पद भरा जाना है। कुल रिक्तियों की संख्या 5 है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के विवरण और आवेदन प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं C. वेबसाइट के करियर अनुभाग को। वेबसाइट है www.c.in/c.web/careers। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी विषय वस्तु विशेषज्ञ के 1 पद को भरना चाहती है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 10 से 16 अक्टूबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। वेबसाइट है www.dds.india.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
13: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
14: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
15: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
12: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
16: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
12: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
16: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
12: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
18: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
19: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
20: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
16: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
12: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
16: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
19: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
19: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: प्रसाद क्लिनिक,
23: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
22: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
23: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
24: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
25: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
24: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
25: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
26: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
27: भरोसे वाले से लेंगे,
26: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
27: और कीमत भी।
26: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
28: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
26: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
19: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
29: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
19: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
30: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
19: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
2: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें
11: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
12: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
13: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
14: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
13: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमरीका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
15: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
3: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
5: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
3: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार

0: में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो अविवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
1: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710 30 92 या 9765665750।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रविवार से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि का त्योहार, मां भवानी के दरबार में सभी तैयारी पूरी। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कई अलग अलग तरीके से लोगों को किया गया जागरूक। एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। और 4 दिनों से लापता युवक का शव पेड़ से लटका, पुलिस ने किया बरामद। धूमधाम से युवा महोत्सव की हो रही है तैयारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पूरे देश में रविवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज में भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि पर माता की भव्य तरीके से पूजा आराधना की तैयारी लोगों ने पूरी कर ली है। जगह जगह पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। अंतिम चरण में माता की प्रतिमा और पंडाल के निर्माण का कार्य चल रहा है। वही गोपालगंज में भी विभिन्न जगहों पर भव्य पंडालों के निर्माण और भक्तों के स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ ही जिले के विश्व प्रसिद्ध माँ थावे भवानी के दरबार में भी भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और दंडाधिकारियों को जगह जगह तैनात किया गया है। सभी तैयारियां जोर शोर से पूरी कर ली गई हैं। बैरिकेटिंग कर भक्तों को विधिवत दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी तैयारियों को लेकर आज न्यास बोर्ड के सदस्यों और मां भवानी के मुख्य पुजारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस बार माता के दरबार में हो रही तैयारियों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया।
9: हर साल के भांति इस साल अधिक सुविधा श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है कि ताकि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई माने उनके पूजा पाठ में रुकावट नहीं हो। इसके लिए हर जगह बैरिकेडिंग किया जा रहा है, झिक झाक बनाया गया है ताकि एक दूसरे से कोई श्रद्धालु का झंझट ना हो, विवाद ना हो। सभी श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करेंगे, राजा हो या रंक, सभी एक लाइन में जाएंगे और सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था।
8: 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर आज अलग अलग तरीके से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चनावे में मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से दिव्यांग कैदियों के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर अस्पताल की मेडिकल टीम ने मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मानसिक बीमार व्यक्तियों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार की स्थिति में सदर अस्पताल के मनोरोग विभाग में स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में मेडिकल टीम द्वारा मानसिक बीमार उक्त के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा नालसा की मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम 2015 के अंतर्गत विधिक सहायता और मानसिक बीमार व्यक्तियों के साथ रहने के तरीके आदि के बारे में कैदियों को जागरूक किया गया। मानसिक स्वास्थ्य केवल किसी बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भावनात्मक संतुलन, सामाजिक व्यवहार और समग्र जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। इसी संदेश के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के मनोरोग विभाग में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिहार में 10 से 16 अक्टूबर तक 7 दिवसीय मन जागृति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने, भ्रांतियों को दूर करने और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यक्रमों की शुरुआत नेतृत्व संदेश और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ संवाद सत्र आयोजित करने की योजना है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन संबंधित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी अभियान चलाते हुए बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को छिपाने के बजाय उन पर खुलकर बात करना और समय पर उचित परामर्श लेना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य केवल किसी बीमारी के इलाज तक नहीं, बल्कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने पर भी जोर देने की जरूरत है। कटिया थाना क्षेत्र के रूप पोइया गांव में 24 वर्षीय किसान देवेंद्र यादव का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया। उनका शव आम के बगीचे से मिला है। बताया जा रहा है कि बगीचा घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। परिजनों ने युवक के हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस को नशे की ओवरडोज से मौत होने की सूचना मिली है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही चलेगा। मृतक रूप पोइया गांव के बीगू यादव का पुत्र देवेंद्र यादव बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार देवेंद्र शुक्रवार की सुबह घर से निकला था। शाम को घर वालों को सूचना मिली कि वह आम के बगीचे में संदिग्ध स्थितियों में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया और सदर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर 4 दिनों से लापता एक युवक का शव उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही जामुन के पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला नगर थाना क्षेत्र के कोनवा गांव का बताया जा रहा है। मृतक कोनवा गांव पेशे से राजमिस्त्री हरीश चंद्र राम का सबसे छोटा पुत्र संजीत बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले 5 अक्टूबर की देर शाम संजीत के मोबाइल पर अचानक एक घंटी बजी और वह बात करते हुए पास के गांव में लगे अखाड़ा का मेला देखने निकला, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, उसका कहीं पता नहीं चल सका। 2 दिनों तक नहीं मिलने पर परिजनों ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच शुक्रवार की देर शाम संजीत कुमार का शव उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक जामुन के पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस मौके पर पहुंची, फंदे से शव को नीचे उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव की स्थिति देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। संजीत के

0: गले में रस्सी के साथ साथ उसकी भाभी की साड़ी भी लिपटी हुई थी। परिजनों ने बताया कि साड़ी बीते 7 अक्टूबर से घर से गायब थी। अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी भी मिलने की बात कही जा रही है। संजीत के जीजा ने बताया कि 5 अक्टूबर की शाम संजीत के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। वह बात करते हुए घर से निकला, उसके बाद वापस नहीं लौटा। देर रात जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए। नंबर पर कॉल किया, एक बार रिंग जाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद से ही परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। मृतक के जीजा ने बताया कि संजीत का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि बीते 2, 3 और 4 अक्टूबर को अज्ञात नंबरों से संजीत की भाभी के मोबाइल पर लगातार फोन कर संजीत को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि संजीत जब 1 साल का था तो सड़क हादसे में उसके माँ की मौत हो गई थी। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह घर पर ही रहता था। उसके दोनों बड़े भाई 2 महीने पहले ही काम के सिलसिले में विदेश गए थे। संजीत भी 10 अक्टूबर को विदेश जाने वाला था। उसकी यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन 10 तारीख आने से पहले इसका शव जामुन के पेड़ से लटकता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। जिले में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों के युवा प्रतिभागी इस बार युवा महोत्सव में भाग ले सकेंगे। उत्सव के दौरान समूह लोक नृत्य, समूह लोक गायन, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण और कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समूह लोक नृत्य और समूह लोक गायन के लिए अधिकतम 8-8 मिनट, भाषण के लिए 7 मिनट, चित्रकला के लिए 2 घंटे तथा कविता लेखन के लिए 90 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रतिभागियों को आवेदन के साथ जन्म तिथि, अंकित पहचान पत्र तथा पैन कार्ड अथवा मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों के योग्य प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सूचित करते हुए अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करें। बताते चले कि 28 अक्टूबर को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का अम्बेडकर भवन में भव्य आयोजन किया जाएगा। इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। महोत्सव में लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला, भाषण एवं कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कला एवं सांस्कृतिक विभाग बिहार पटना के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा युवाओं का मौसम के अनुकूल स्मार्ट कृषि हेतु कौशल विकास विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्णिया, वैशाली, बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, जमुई, पटना और बक्सर से आए 20 युवा किसानों को मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि संबंधित निर्णय लेने तथा जलवायु सहिष्णु एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि मौसम परामर्श किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके आधार पर सिंचाई, बुआई, फसल प्रबंधन तथा कीट एवं रोग नियंत्रण संबंधित उचित निर्णय लेकर कृषि जोखिमों को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने किसानों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को अपने खेतों में अपनाने का आह्वान किया। भूमि एवं जल प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने मौसम आधारित कृषि नियोजन, जल संसाधनों के कुशल उपयोग तथा डिजिटल तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसानों को मौसम संबंधित मोबाइल ऐप एवं वेबसाइटों का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को भारत मौसम विज्ञान विभाग की पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाओं, कृषि मौसम परामर्श, सामेकित कृषि प्रणाली, फसलों एवं कीट रोगों पर मौसम के प्रभाव, मौसम आधारित फसल बीमा, जलवायु अनुकूल सब्जी उत्पादन और पशुधन प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल ऐप एवं वेबसाइटों के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, वर्षा की संभावना, तापमान में बदलाव और प्रतिकूल मौसम की चेतावनियां प्राप्त करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी के आधार पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन एवं फसल कटाई की योजना बनाने के तरीके भी समझाए गए। प्रतिभागियों ने संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र का भ्रमण कर
1: सौर ऊर्जा आधारित जल प्रबंधन, मौसम स्मार्ट सिंचाई तकनीकों तथा प्रतिकूल मौसम में मत्स्य

0: पशुपालन प्रबंधन की जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही किसानों ने अपने अनुभव भी साझा करते हुए प्रशिक्षण को उपयोगी बताया और कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप कृषि कार्यों की योजना बनाने से उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक और जादूपुर मोड़ के बीच अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्गा पूजा को लेकर सभी थानों पर शांति समिति की बैठक की जा रही है और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार आयोजित करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी पंडालों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पंडालों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, निर्धारित नियमों का पालन, अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने और असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगरानी रखने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। शहर के न्यू पुलिस लाइन केंद्र में डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से किया गया। इसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक साइबर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तथ्यात्मक, जिम्मेदार एवं मर्यादित पत्रकारिता को बढ़ावा देने तथा भ्रामक सूचना, अफवाह एवं सनसनीखेज सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसी कड़ी में जिले के सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स एवं पेज एडमिन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया गया कि वे किसी भी सूचना या किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से पूर्व उसके सत्यता की पुष्टि करें तथा गोपनीयता, सामाजिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। विधि व्यवस्था से संबंधित किसी भी संवेदनशील या सनसनीखेज सूचना एवं वीडियो को साझा करने से पहले वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराएं तथा सत्यापन के बाद ही उसके प्रसारण के संबंध में निर्णय लें। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज में जागरूकता एवं सूचना प्रसारित करने का सशक्त माध्यम है, इसलिए सभी डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों से पुलिस ने अपेक्षा किया है कि वे जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता के मानकों का पालन करें तथा निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रविवार से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्रि का त्योहार। मां भवानी के दरबार में सभी तैयारी पूरी। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कई अलग अलग तरीके से लोगों को किया गया जागरूक। एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। और 4 दिनों से लापता युवक का शव पेड़ से लटका, पुलिस ने किया बरामद। धूमधाम से युवा महोत्सव की हो रही है तैयारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
9: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
8: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
10: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
11: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।
15: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
16: रियाज रेट्रो।
17: फेसबुक मेमोरी जिंदाबाद। बड़ी देर से कंप्यूटर के सामने बैठी थी, मेंटली फैटिग्ड, काम के प्रेशर से थोड़ा सा बैटल वॉर्न, और सोच रही थी कि इस एपिसोड में क्या बात करूं आपसे। नींद नहीं आती आजकल, पर रात जागने पर तो हम बात कर चुके हैं, एक नहीं कई बार। कमर तोड़ थकान होती है कभी कभी, पर जद्दोजहद और थकान पर भी एपिसोड्स हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस से बनता है ये पॉडकास्ट, और लाइफ एक्सपीरियंसेस इंद्रधनुषी होते हैं जरूर, पर साइक्लिकल भी। और 3 साल बाद थैंक यू भरत, हमें रियाज रेट्रो की सालगिरह के बारे में याद दिलाने के लिए। 3 साल बाद ऐसा लगने लगा है कि जो कहना चाहती हूँ वो शायद कह चुकी हूँ ऑलरेडी। और फिर उसी साइक्लिकल लाइफ की ही तरह आया एक फेसबुक मेमोरी। 2017 में मैंने न्यूज़पेपर से कुछ शेयर किया था। एक किसान ने ये बात कही थी जब उनसे उस साल के हीट वेव के बारे में पूछा गया और उसका असर गेहूं की फसल पर। उस किसान ने कहा, अगर गेहूं कम गर्मी में पकता है तो बेहतर है, ज्यादा गर्मी से जल्दी पकेगा तो फसल पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। हाय, सहज पके सो मीठा हुए, जस्ट सच एन अटली ब्यूटिफुल फ्रेज. देश की मिट्टी से निकला विजडम फ्रॉम द सॉयल एंड सो रेलेवेंट फॉर ऑल.

ऑफ अस, जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब हमें सब चाहिए होता है और अभी अभी अभी, तब जरा इस किसान की बात याद कर ले। सहज पके सो मीठा हुए।

0: ब्यूटीफुल मेलोडी है ना, मिड 50s की फिल्म टांगा वाली, सलिल दा का संगीत, आवाजें हेमंत कुमार और लता मंगेशकर। हल्के हल्के चलो सांवरे प्यार की मस्त हवाओं में, लिखा प्रेम धवन ने जब टांगे में हल्के हल्के चल सकते थे, वे बिफोर चल धनो भाग।
1: रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना।
0: डाकुओं से बचने के लिए टांगे की स्पीड बढ़ गई और खुद से बचने के लिए अपनी। रुकते नहीं हैं हम ना आजकल। मैं अपने किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएट को जब बताती हूँ ना कि दिन में अक्सर मेरा फोन काफी देर के लिए बंद रहता है, या अगर रात नहीं जाग रही तो फिर सारी रात बंद रहता है, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं रामानंद सागर के रामायण की दुनिया से टेलीपोर्ट होकर आ गई हूँ अचानक 2019 में। कौन रुकता है ऐसे इतनी देर, क्योंकि डिजिटल डिस्कनेक्ट का मतलब तो रुकना ही हो गया ना आजकल। ठहर गए आप तो फिर। मैं आपके साथ रिया, और जहां तक मैं समझती हूँ, ठहरने से ही तो ठहराव आएगा, है कि नहीं? पर कहां रुकते हैं हम एक पल के लिए भी। द व्हील्स ऑफ फॉरएवर टर्निंग इन द विंडमिल्स ऑफ आवर माइंड, लाइक अ सर्कल इन अ स्पाइरल, लाइक अ व्हील विद इन अ व्हील, नेवर एंडिंग और बिगिनिंग ऑन एन एवर स्पिनिंग व्हील। डिजिटल की दुनिया में स्विच ऑन है ना आप, तो ये गाना गूगल करके सुन लेना कभी, विंडमिल्स ऑफ योर माइंड, बहुत ही अमेजिंग है।

पर उसके लिए वक्त कहाँ है। अब अगर मिर्ज़ा गालिब का दिल ही ढूंढ रहा था फुर्सत के रात दिन इतने साल पहले और गुलजार साहब तक को नहीं मिला, तो हमारे नसीब में कहाँ फिर। क्या तभी आजकल दुनिया में इतनी कड़वाहट है? क्योंकि जैसा कि एक किसान ने हमें बड़े प्यार से समझा दिया, मिठास के लिए तो वक्त चाहिए ना। सहज पके सो मीठा होए।

0: लीगल एज ऑफ कंसेंट पर बनाया हुआ एजुकेशनल गाना 1980 की फिल्म कर्ज से। आवाजें लता जी और किशोर दा जो टीनेजर तो नहीं साउंड करते थे 80s तक। चीकी लिटिल गीत लिखा आनंद बख्शी ने और टीना मुनीम, ऋषि कपूर वाइल लुकिंग गुड डिडंट लुक 16 और 17 फ्रॉम एनी एंगल इन दिस फिल्म। तभी शायद लक्ष्मी प्यारे ने शुरू में वो 16 वाली नौटंकी डाल दी थी। क्वाइट लाइकली इन फैक्ट दैट वाज अ सुभाष घई डायरेक्टोरियल टच। उससे पहले आशा जी और किशोर दा ने मेडिकल लेसन दिया कि प्यार का दर्द कैसे और कितने प्रकार के होते हैं। फिल्म का नाम भी दर्द। लवली लिल्टिंग एल्बम बाय खयाम और नक्श लैलपुरी।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे। सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
1: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: रियाज रेट्रो। आजकल एक ट्रेंड तो देखा सुना पढ़ा होगा ही आपने, आफ्टर ऑल ट्रेंड चेजिंग में तो माहिर हैं हम सब। वेल, इट्स कॉल्ड स्लो लिविंग। इसके भी कई सब जॉनर्स हैं, स्लो ट्रैवलिंग, स्लो ट्रैकिंग, स्लो रीडिंग, स्लो फूड, मतलब जिसको बनाने में वक्त लगे, और स्लो ईटिंग भी, नो सीरियसली, कि कैसे चबा चबा के एक एक निवाले का मजा लेकर खाना चाहिए, उसको कहते हैं स्लो फूड। कमाल है ना, जिंदगी से सारी धीमी गति को हटाकर हमने उसे एक हैशटैग में उड़ेल दिया है। टॉक ऑफ आउटसोर्सिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में हैरेस्ट हैरीड वेटर्स और हेल्पर्स के शर्ट पे एक येलो स्माइली बटन बडी होता है ना, खुद नहीं मुस्कुरा रहे पर उनकी कमीज मुस्कुरा रही है। सच में पूछने का मन करता है कभी कभी कि भाई साहब, मुस्कान भी इस पीले चकले को आउटसोर्स कर दिया है क्या, आपसे बात करूं या इससे। मैं आपके साथ रिया और हैशटैग स्लो लिविंग के बारे में सोच रही थी। मैं शायद गर्मियों में वैसे भी सबके सब स्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए मेरे टेबल के आगे खिड़की, खिड़की के आगे नीम का पेड़, जिस पर पलते पनपते झड़ते उगते देखा है मैंने साल दर साल द मैजिकल प्रोसेस ऑफ स्लो लिविंग। क्या खूबसूरती से उस पर मौसम आते हैं, जाते हैं, इतराते हैं। मेरे नीम के पेड़ की नंगी खाली टहनियां जब मार्च से लेकर अब तक धीरे धीरे भरने लगी, फलने फूलने लगी, तोते कबूतर गिलहरी वापस आने लगे, तो कोई उससे पूछता तो एक बार, कैसा लग रहा है आजकल।

0: सहज पके सो मीठा होए का ये एक और रूप है वैसे थोड़ा सा खतरनाक चेहरा। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आज प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। सपोजिटली अ लव सॉन्ग, पर फिल्म डॉन में ये है तो असल में जीनत का रिवेंज सॉन्ग। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, अनजान के बोल, आवाजें लता जी और किशोर दा। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ये भी एक और एस्पेक्ट है धीरे धीरे हौले हौले का।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम।

0: स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57 902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: रियाज रेट्रो।
6: मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एपिसोड की परतें खुलती रहती हैं मेरे लिए ही आपसे बात करते करते। जब इस विषय पर बात शुरू की थी तब सोचा नहीं था कि ये एक डार्क मूड भी ले सकता है, पर देखो बात कितनी मासूमियत से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई। डॉन से पहले का गाना भी बच्चन साहब की ही फिल्म से, द इनोसेंट जेंटल, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, लता जी, खयाम और साहिर। सच मदरहुड से बेहतर मिसाल होगी नहीं सहज फके सो मीठा होए समझाने के लिए, है ना। नेचर टेक्स इट्स टाइम, स्वीट टाइम। मैं रिया आपके साथ, और चाहे चाइल्ड बर्थ जैसा एंजेलिक मैजिक हो या रिवेंज सा डार्क मैजिक, वक्त लेने का मजा ही कुछ और है। वैसे आई वंडर, लोग क्यों कहते हैं कि बदला वक्त लेकर लो तो ज्यादा मजा आता है? वो जहर पाल कर संभाल कर उसको बढ़ावा देकर क्या मजा आता होगा? शायद यही कि जब हम गुस्से और दर्द से भरे हुए हों, जब अंदर आग लगी हो, सब टूटा बिखरा हो किसी की पहुंचाई चोट से, तब हम दिमाग से काम नहीं लेते, तब बदला लिया तो इट्स अ ब्लंट फोर्स इंस्ट्रूमेंट, जोर से हथौड़ा मारने जैसा। पर वक्त के साथ मन शांत होता है, दिल ठंडा और दिमाग तेज होता है, तब बदला हथौड़े से छुरी में बदल जाता है और हमारा रिवेंज एक वाइल्ड अटैक नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस, क्रूल्टी से प्लान किया हुआ ये बदला ज्यादा स्वाद देता है शायद। गॉड, बोलते बोलते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नफरत को इतनी देर कैसे पाल लेते हैं लोग यार? क्योंकि जब तक हम किसी से नफरत करते हैं तो तब तक तो हम उसके कैदी हैं ना। अगर वक्त लेना ही है तो खुद को आजाद करने के लिए लिया जाए, रिवेंज के लिए क्यों, है ना।

0: सुमन, देखिए आपने मांगा और आ गई आपकी गीता दत्त। एक सीक्रेट बताऊं, गाना लगाते वक्त ख्याल नहीं आया था, मैंने थीम के हिसाब से गाना चुना, पर अभी आर्टिस्ट क्रेडिट्स बताने लगी तो ख्याल आया कि अरे वाह, सुमन की इच्छा तो पूरी हो गई, आ गई गीता दत्त विद द एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग वक्त ने किया क्या हंसी सितम। एसडी बर्मन, कैफी आजमी। तपस्या फिल्म से जो राह चुनी तूने, किशोरदा की आवाज में, उससे पहले। हाँ, वक्त लगता है कभी, पर उसी राह पे राही चलते जाना रे। रविंद्र जैन और एमजी हशमत।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
0: रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल मेरा @MissRiaMukherjee, MissRiaMukherjee। जुड़ना हो तो वक्त लगाकर सोचने के बाद ही अगर एक और सोशल मीडिया पर आने का ख्याल हो तो वो भी जायज है। वैसे एनर्जी, टाइम और अटेंशन सब खींच लेते हैं ये हमारे फोन पर लगे सोल स्नैचिंग सोशल नेटवर्किंग एप्स। इनसे अगर थोड़ा दूर रहना, जिंदगी को थोड़ा स्लो रखना हो, देन आई गेट इट एक्चुअली। ऑफ कोर्स ये स्लो डाउन वाली बात, सहज पके सो मीठा होए वाली एनालॉजी सबसे ज्यादा यूज हुई है फिजिकल इंटीमेसी के मामले में इन हिंदी सिनेमा, है ना। खासकर संस्कारी 60s और 70s में, जब बारिश, तूफान, शराब और टूटे हुए खंडहर या झोपड़पट्टी की जरूरत होती थी हीरो हीरोइन के बीच में कुछ भी होने के लिए। बाप रे, कितने इंतजामात। ये वो जेनरेशन थी जो मानती थी सेक्स इज अ गिफ्ट अ वुमन गिव्स अ मैन फॉर आई डोंट नो, फॉर बीइंग डिसेंट, बीइंग लविंग, बीइंग रिलायबल, फॉर मैरिंग हर। ये तो तोहफा था, कोई शेयर्ड एक्सपीरियंस थोड़ी था। वैसे ये घर की इज्जत, घर की लाज का सारा बोझ लड़कियों पर ही क्यों होता था या होता है आज भी, ये समझ में भी आती है, क्योंकि शी इज द ओनली वन हु कैन गेट प्रेग्नेंट। और इज्जत, लाज, संतुलन तो बाहर पड़ोसी को दिखाने वाली चीज है ना, बस अंदर से महसूस करने वाली बात थोड़ी है। तो इसलिए बड़े सारे गीत बनते थे कि रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट प्राइज मिलेगा, पर अभी नहीं, बाद में। काइंड ऑफ फनी इफ यू थिंक अबाउट इट।

काफी कॉर्नी लगती है आज ये लाइन। ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार करो। लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मी प्यारे, आवाजें लता जी और महेंद्र कपूर फ्रॉम द फिल्म आए दिन बहार के। आएंगे जब कली फूल बनेगी तब आएंगे। उससे पहले था फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से लता जी की आवाज में थोड़ा सा ठहरो, यू रिमेम्बर, उस शाइनी ट्रॉफी के लिए। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर के बोल, द क्लासिक हिंदी रेट्रो फिल्म डिवाइस, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते होते प्यार होता है, या कम से कम एक्शन होता है। वैसे जोक सपाट, वक्त लेकर कुछ करने में एक अलग मजा तो है। बरगद का पेड़ हो या ओक ट्री, हाथी का बच्चा हो या इंसान का, मैग्नम ओपस फिल्म हो या एक वेल रिसर्च्ड नॉवल, वक्त लेकर लिखने, सुनने, पढ़ने, पालने में कुछ बात तो है। आई नो ये इंस्टेंट क्लिक्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंटेंट का जमाना है। कल के अखबार जितना पुराना तो खुद पुरानी बात हो गई है, अब तो कहना चाहिए पिछले घंटे की ट्वीट जितनी बासी। पर इधर एक फेसबुक मेमोरी ने ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल और एक किसान की कही बात गेहूं की फसल के बारे में, कि सहज पके सो मीठा होए, बस इनसे एक एपिसोड बन गया। 2 साल बाद वही लाइंस पढ़कर मैं शायद और भी ज्यादा रिलेट कर पाई, क्योंकि मेरी अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने की जर्नी, द डिस्गाइज की जर्नी भी तो वही रही है अब तक। कौन कह सकता है कि महज 18 मिनट की एक फिल्म के पीछे इतना काम, इतने जज्बात, इतनी मेहनत, इतना खून पसीना आंसू, इतना कुछ जा सकता है। और वक्त भी, वक्त के साथ मेरा रिश्ता बदल सा गया है इस फिल्म की जर्नी के साथ। द सेंस एंड टेक्सचर ऑफ टाइम हैव चेंज्ड ट्रूली। मैं थी आपके साथ रिया, और मैं जानती हूँ इस मसले पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। गुलजार जी वाला किस्सा भी शेयर किया था किसी एपिसोड में आपके साथ, कि बिटिया रुकोगे नहीं तो देखोगे कैसे कि पहुँचे कहाँ हो। हमेशा सारी जिंदगी भागने दौड़ने के बाद शायद मैं ऐसे पड़ाव पर हूँ अब, जब स्लो लिविंग, माइंडफुल लिविंग, स्लो एक्सपीरियंसेस की वैल्यू दिखने लगी है। और ख्वाब भी तो स्लो हो सकते हैं ना। याद रखना जरूरी है कि सपने आज साकार नहीं भी हो रहे, बहुत दूर से लग रहे, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: का हो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होकी।

0: समझा नहीं।
1: अच्छा तो चला
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तत्व से मोहब्बत हो जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: आप कौन कौन मैम बोल रही हैं आप?
2: मैं भारती।
1: अच्छा जी, भारती भारती, अभी तो उनका नंबर था, आज भारती जी का नंबर लगा है।
2: जी
1: क्यों इतना लेट से? क्या घर चली गई थी क्या?
2: नहीं तो
1: वो दिन दो तीन प्रोग्राम वो दे चुके हैं। वो क्या नाम है उनका?
2: मनोरमा जी।
1: मनोरमा जी, तो फिर आप जो है इतने दिनों से कहाँ? हम तो समझे यही पे है, लेकिन इस प्रोग्राम में आप नहीं जुड़ती है ना? अब पहले जैसा भारती जी नहीं है, बदल गई है।
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं, बदले नहीं है। जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना कर लेता है।
1: कर लेता है। पहले आवाज भी बहुत आपका सोलो था, पहले बहुत कुछ था। अब तो मैं अपना प्रोग्राम में आप गाना भी गाती है, औरतें जो है बड़ी तारीफ कर रही है कि मैडम जी आप गुनगुनाती है तो बड़ी अच्छा लगता है। आप पूछती है कि आप गाती है कि नहीं, हाथ नहीं और शर्म से झुक जाते हैं लोग। तो एक सुना था कि वो कह रहे हैं कि आप गाती है तो बहुत अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा हम गुनगुना लेते हैं कभी। ऐसा सुनने में हमको मजा लगा आपका प्रोग्राम का, तो सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप गुनगुनाते रहिए अपने प्रोग्राम में भारती जी।
2: बिल्कुल कोशिश कर रही
1: हूँ। तो भारती जी आज कौन सा गाना सुनवा
2: बता दीजिए?
1: आपने बता दीजिए, कोई गाने का बोला आप ही बता दीजिए कि मैं ये गाना आपको सुनवा रही हूँ। बोलिए, हमारे लायक मतलब हमारा उम्र जो है तो ज्यादा है ना, 50+ है मेरा, तो अब उसके हिसाब से बोलिए कौन गाना सुनवा रही है। आप बड़ी गुनगुनाते हैं इसके लिए हमको पूछना पड़ा, कहना पड़ा। बोलिए, आज आपको घेर डाले हैं गाने के पीछे। अच्छा, कोई गाना है धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, ऐसा कोई गाना है?
2: हाँ है।
1: एक महावीर जी है हमारे कपूरपुरा बाजार पे, वो कहते हैं कि ये गाना का रिक्वेस्ट किए ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। थोड़ा उतने माइंड शॉर्ट आदमी है वो, बराबर कहता है वो हमसे ये गाना सुनवाइए ना। बराबर रेडियो जो है कान पे लगा कर रखता है, दुकानदारी करता है, पूरे दिन रेडियो बैठता है उसका।
2: मूवी है जुर्माना और
1: जो भी हो, ये गाना जो है ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिए, ये गाना सुनवा दीजिए। मोहबी जी खुश हो जाएंगे गाना सुन के, कहेंगे वाह वाह मेरा गाना बजा।
2: बिल्कुल,
1: तो वही गाना तो बजा दीजिए मैडम।
2: और गाना उन्हीं को डेडिकेट करेगा।
1: बस बस आपको अभी तो हम महावीर जी को डेलीकेट करेंगे और कहेंगे का हो महावीर जी, कैसा लगा लगा ना हमरा के बताइए, दुकान पर आए तो वही गाना सुनवा दीजिए।
2: ओके
1: ठीक है, ओके तो रख रहे हैं।
2: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 FM में।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या खरीद बा?
1: ठीक बा, आपन बताए?
2: बढ़िया बा, क्या होता?
1: बस रोबा सबसे बात होता।
2: और सब बताओ मैडम?
1: और सब पे ठीक बा। तब क्या होता अभी?
2: जुमा है, थोड़ा सा सफाई होता।
1: अच्छा जी, हाँ हाँ, चलिए बढ़िया बा। तब कौन सा गाना सुने बा?
2: गाना नहीं है, गाना रब न करे ये जिंदगी, रब न करे ये जिंदगी, जिंदगी किसी को दगा दे, वही गाना चलेगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सबसे पहले आपको, सुनने वाले सभी लिसनर को।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
2: लाडली बोल रही हूँ, नवादा से।
1: जी आप, मुझे तो मालूम। चलिए फिर, बढ़िया है,
2: तो चल रहा है अच्छा से।
1: हाँ हाँ,
2: चलिए ठीक है।
1: ठीक,
2: आप मेरा अपना नाम बता दीजिए थोड़ा।
1: मेरा नाम भारती है।
2: अच्छा, भारती भी आई है क्या? है
1: हाँ।
2: और मैं नहीं आई?
1: नहीं, वो भी है।
2: चलिए ठीक है,
1: ओके। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहते।
2: थैंक यू,
1: थैंक यू।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते,
7: कैसे हैं मैम?
6: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
7: हम भी ठीक है
6: जी। नाम बता दीजिएगा अपना।
7: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
6: जी जी, तो क्या हो रहा है अभी?
7: अभी तो कॉल लगा रही थी।
6: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: तू बसी हो कर अंदर में, हम ढूंढते रह गए मंदिर में।
6: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
7: जी मैम, आपको और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरा छोटा भाई है उनको भी।
6: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
7: जी मैम,
6: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
7: जी मैम।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
0: में।
1: जी क्या हाल चल रहा है?
0: बिल्कुल ठीक बा, कैसा बानी?
1: हम तो ठीक बानी
0: जी।
1: क्या होता है?
0: अभी तो क्लास में थोड़ा सा टाइम निकाल के रुआ से बात कर रहा था।
1: काफी अच्छा, बोल लेता नहीं रुआ?
0: कोशिश कर रहा था की भोजपुरी बोली।
1: जी ऐसे ही कोशिश कर रहे हम, बिल्कुल अच्छा से बोले। अभी तक काफी अच्छा बोला था।
0: जी हम सोचने की आज के लास्ट टाइम हो गए, 12:31 हो गए, अब हमारा फोन नहीं लगा, तो लाइन में हम रही तो आप रिसीव कर लेंगे।
1: जी
0: जी अभी आज पुराना माई फिल्म गाना सुरेश वाडकर के वाली।
1: गाना के बोल बता दी।
0: गाना के बोल है चलल जाला भौजी, इस तरह के बोल है चलल जाला हो भौजी हमारा गाड़ी, इस तरह के कुछ बोल है। गाना बहुत अच्छा बात, सुरेश वाडकर और कौन एगो लेडी सिंगर है, नाम याद नहीं थे।
1: चलिए कोनो बात ना, हम देख के बजा दे।
0: जी जी जी
1: और गाना केहू के सुनाऊं के बाद?
0: जी जी रोवा के सुनाई हम सुनी और जितने भी रेडियो रंजन के लिसनर सुनाओ के चाहत रहनी।
1: जी जी कर और गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी नमस्ते, प्रणाम और राधे राधे।
6: नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे।
7: अस्ते अस्ते काहे बोलत नहीं,
6: का हो गई बा आज रुआ
7: और घर फंस गई बा
6: कहे की का हो गई, काहे से बोलत नहीं,
7: पहचान कही है
6: बड़ा दिन से पहले बनी हुई से फंसा था का
7: और का बोले ला बीएफ कल भूख रही ना तो फल फलहारी ज्यादा खा ले बनी वही क्या असर। आप बताई नाश्ता हो गया?
6: नाश्ता तो हो गया।
7: और सुनी ना, आज की रिकॉर्डिंग जितना चलल बाबा मेरा खाली रौरे फरमाइश वाला रवा पसंद की एक दो गाना अपना पसंद से लोग सुन ले बनी है।
6: बहुत है लोग की रवा बहुत दिनों से बचता नहीं, रवा अपना पसंद से बजाई बजाई
7: और वही में तो कसर हम पूरा कर ले रही और गाना बहुत अच्छा सेलेक्ट कर ले रही और बहुत अच्छा लग रही जी
6: एकदम बिल्कुल रोवा पे सूट करे वाला गाना करके डल ले रहा हूँ।
7: हमके पता रहे वो गाना के एक लाइन हम समझ चुका रहा है सर के बारे में, अगर हम बोलबो करें तब पूरा दिल से बोले मैं शिकायत सो तो। और खास करके वहाँ के जनता नहीं, जब वो संडे के दिन आवे नहीं तो इतना धाकड़ भोजपुरी बोले नहीं कोनो कोनो शब्द में, बहुत काफी अच्छा लगेगा। और हाल में ये संडे के दिन एगो बात बोलत रही कहत रही जे एगो चाना अकेले भाड़ ना फोरी
6: जी जी तो बात है
7: सुन के काफी अच्छा लगे। तो आज एगो छठ के सॉन्ग सुना दी।
6: बिल्कुल बता दे कौन सा?
7: जोड़े जोड़े फालवा पवन सिंह जी की आवाज में।
6: अच्छा अच्छा।
7: और पूरा छठ के माहौल और नवरात्रि के माहौल ये सब हमने के मुंह पर आ रहा बा। और बताई नवरात्रि रवलो के गाँव में कहिया चढ़ाता?
6: संडे कहीं ना चढ़ाता।
7: हाँ संडे की विचरता। और दी ये गाना सब लोग के सब हरे रही रानी की तरफ से का
6: बिल्कुल और... रेडियो रिमझिम में कॉल करनी है खाते बहुत बहुत धन्यवाद।
7: बाय
6: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो और 90.4 एफएम में।
0: सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ, हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज से बात कर रहे हैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी, हम लोग का भी ठीक है।
0: चलिए मैम, ठीक रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैडम गाना सुनना चाहते है बंधन फिल्म का, जो हिंदी गाना है बंधन फिल्म।
1: हाँ,
0: सूरज कभी गगन से चंदा कभी सूरज किरण से।
1: जी जी है।
0: हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम, सुनवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको और रेडियो के जितना हमारे परिवार है उन लोगों को।
1: जी,
0: और हमारे दोस्त लोग है सुफी आलम और मिराज आलम, यूसुफ अली, जितेश शर्मा, गोविंदा शर्मा, मोहम्मद रूफ, बस इन लोग को सुनवाना चाहते हैं।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ओके।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते दीदी।
2: जी नमस्ते।
3: विकास कुमार हिंतापुर।
2: जी जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया बानी, आप कैसन बानी मैडम?
2: हम तो ठीक बानी।
3: अच्छा, सब नाश्ता उस्ता हो गई बेटे?
2: हाँ, नाश्ता हो गई बा।
3: अच्छा, सब और सब बताई, मौसम मौसम कैसन हटे गोपालगंज में?
2: अभी तो गोपालगंज के मौसम बढ़िया बनत आवे।
3: अच्छा, संडे के दिन तो नवरात्र चढ़ जाये नो माता जी के? माता जी आ जाए धरती पर।
2: बिल्कुल आए
3: परकट से निकल करके।
2: तब और सब बताएं।
3: तब रौरा पूजा वूजा करी ले कि ना नवरात्र में? भूखी ले?
2: पूजा करे नहीं, भूखे नहीं, बस तू अभी भूखे नहीं, पूरा ना भूखे देला लो कि जाऊं के बाहर आऊं बाद तब परेशान हो जाए।
3: अच्छा, दुए को भूखी ले? अच्छा ना, वही में ड्यूटी नु करे बनू। सही बात बटे। और काम धाम नहीं था तो मैडम वही करिए बैठल बा, मशीन वशीन बंद बटे तो।
2: अच्छा, छुट्टी बा का?
3: ना छुट्टी ना, कंपनी में हम भी बैठल बटे एकदम।
2: चलिए बढ़िया बाबे, आराम करे के मिलत आवे और क्या चाहिए।
3: काम धाम रहेला तब न थोड़ा मन उन लागत रहेला ना।
2: अच्छा, कब कब आराम करे के चाहिए, ज्यादा काम ना करे के चाहिए?
3: भाई दो चार दिन से खाली आ करके बस बैठला ही जाई जाता है कंपनी में।
2: कौन बात है,
3: 8 घंटा
2: हाजिरी
3: बना था 8 घंटा के। सब और सब बताई, घर में सब सबको सही है ना?
2: घर में सब क्यों ठीक बा?
3: मेहनत करके बहुत लगाओ जला ना फोन रोल से बात करेगा।
2: जी जी, क्यों क्यों कहे नहीं लो कि हम इतना बार लगे नहीं है, सुन के बुझाला कि कितना मेहनत करे के पड़ा था।
3: नहीं हम ही कबो कबो लगा दिले मैडम रोल से, क्या बताई 40-50 साल लगाई ले तब ये खाली लगेगा।
2: अच्छा,
3: क्या मैंने 49 बार लगाए तो 50वां हाल ही में लगी रहा फोन। अब बुझ जाए कि कितना देर वेट करे के पड़ेगा।
2: तब बता दी कौन सा आज गाना सुने?
3: आज कौन सिंह के भक्ति गाना सुने?
2: गाना के बोल बता दी।
3: निमिया के छाओ में 9 दिन रहलू माई संग हमारे गाँव में, यही वाली मैडम।
2: जी जी, और गाना क्यों के सुनेबो करे?
3: सबसे पहले आपके सुनवाई आप लोग के जितना रेडियो रिव्यू सुनने वाला हो सबके।
2: जी, गाना तो बहुत अच्छा बा, सुने तो सबके सुनी, अच्छा गाना बा।
3: दिल छू दे वाला गाना बा एकदम। दसवीं के दिन ना बाजेला ना मैडम, लेकिन शुरुआतों में बाजेला।
2: कोनो बात ना, पहले बुलावल तो जाओ माता जी के, ओकरा बाद
3: जरूरी बटे।
2: चलिए ठीक बा, तब और गाना प्ले करता नी।
3: अच्छा,
2: सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
3: ठीक है, नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते।

0: स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार, हम मधु सरिया से बोल रहे हैं, राजीव माँ।
0: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है।
0: तो क्या कर रहे हैं अभी?
1: अभी क्या कर रहे हैं, बाजुआरी में कहाँ काम चल रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं?
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है,
0: बता दीजिए। गाने की बोल बता दीजिए।
1: गाना है कि साइकिल में साइकिल लड़ाई बबुलिया है।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghante bajte hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 जी हाँ, 80।

0: तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 एफएम में।
1: कैसी हैं?
2: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: नाखून का हो गया?
2: जी मेरा तो हो गया है।
1: गाना सुना दीजिए।
2: बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: खुशी पठानपट्टी से।
2: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हिंदी गाना नहीं है, इश्क दीफानी। वही हिंदी गाना बता दीजिएगा, इश्क दीफानी लड़ गई, वही गाना।
2: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जिया का, जिया को, साइन अपी को, आलिया को, सलमान को, रोशनी को और सबको, रेशमा जी को।
2: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे इसमें बोलते पठान पट्टी से।
1: जी जी, कैसे बानी रहुआ?
0: ठीक बानी हम अपन बताई।
1: हम लोग ठीक बानी सन।
0: ठीक बानी रहुआ? हम नरमा में।
1: हम की ठीक बानी।
0: नाश्ता पानी सब हो गए?
1: हाँ,
0: तो ठीक रहा था ना?
1: बिल्कुल एकदम ठीक रहा था।
0: काय मेहराइल बोलता नहीं तुम्हें? दिक्कत तो का जी?
1: ना जी, कबो कबो बोलत बोलत ना बोले के मन करेला।
0: तो पानी लेके आई?
1: पानी रख ले वानी सन।
0: रख ले वानी पीनी है ना पानी होनी?
1: पीने वानी सन। पानी ना रहो तो कैसे रहो?
0: ठीक है कहता नहीं। अरे घर पर में सबको ठीक बा?
1: हाँ सबको ठीक बा।
0: बाय घर गाना गाओ तो नहीं आये? बेईमानी करता नहीं?
1: बेईमानी नहीं की करत तो एक दिन तो जेबे कभी मन पहले रहुए तब वो भोजपुरिया एक्सप्रेस में।
0: भोजपुरी गाना था, रितेश पांडे गाना था ना?
1: हाँ लिया वो खबर ये।
0: तो भवानी को गाना सुनाई?
1: बिल्कुल सुना जाये।
0: सुने नहीं, जब चालू हुआ तो सुने नहीं, तो पहले ही बता देना की बजा दू गाना। और सब बताई?
1: और सब तो ठीक बावे।
0: सब
1: खाना पीना हो गई बा?
0: खाना नस्तो हो गया, खाना हो गया, दोनों हो गया।
1: हाँ टाइम भी तो होता है, एकदम लेट हो गई।
0: खाना बना दे ले बानी जन। नहीं नाश्ता 15 सवेरे ही भाई।
1: तो बताई कौन सा आज गाना?

0: सुने?
1: गाना सुनेगा, हिंदी गाना सुनेगा।
0: बता दी।
1: हम अपनी मोहब्बत की इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे।
0: और
1: सुनाओ रौरा बानी, मनारमा मैम बानी, रानी बाड़ी, करिश्मा बाड़ी, उनका भाई बड़न, निसार बड़न, और जितना लोग सुना था सब फिर सुनी रचना की तरफ से गाना।
0: बिल्कुल, गाना प्ले कर जानी।
1: जी ठीक बात,
0: सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान

0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो मैम
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: अस्सलामुअलैकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
6: ठीक है
5: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं ठीक है।
5: आपका नाम बता दीजिएगा।
6: रोशनी।
5: रोशनी,
6: हाँ।
5: कहाँ से?
6: पेधान पट्टी से।
5: अच्छा जी,
6: और सब बताइए।
5: जी और सब ठीक है,
6: आस्ता हो गया?
5: जी बिल्कुल हो गया है मेरा। आपका हो गया?
6: हाँ मेरा हो गया।
5: तो कौन सा गाना सुनना है? हेलो,
6: तुमको मंगा दीजिएगा।
5: जी
6: हाँ,
5: गाना बता दीजिए मुझे।
6: कोई भी बता दीजिएगा, भोजपुरी गाना।
5: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
6: हाँ, पहले सुनाएंगे आपको और मेरे अम्मी को और रानी चाची को और जिया को और तारा को और साहिन को और रेशमा जी को।
5: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजन 90.4 FM।
6: ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जय भवानी, मैं बद्रीनारायण मुनि बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कहाँ से हैं आप?
1: भलही से।
0: अच्छा जी,
1: तो आप सुनाइए, हाल चाल क्या है?
0: मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं।
0: जी ठीक, गाना भी चाहिए?
1: अब हमको तो गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बताइए।
1: घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला।
0: जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: आपको, पूरा रिमझिम परिवार को, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सबको सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: हेलो, हाँ
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है जी। जय भवानी।
0: जय भवानी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जय जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नसीब इम्तिहान लेती है मेरी, तेरी दर्द तड़प देती है मुझे। दिल से तो कभी तुम्हें दूर नहीं किया, क्यों बेवफाई का इल्जाम देती है मुझे। नमस्कार।
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैं कमरान नसीब, फकरी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट सिवान से।
6: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
5: मैं भी बढ़िया हूँ, और सब बढ़िया घर में, परिवार सब बढ़िया।
6: जी सब बढ़िया।
5: मौसम कैसे चल रहा है गोपालगंज का?
6: मौसम तो गोपालगंज का बढ़िया बन रहा है।
5: तो धूप हो रहा है, गर्मी है अभी। मैंने
6: धूप तो हो रहा है पर उतना नहीं, कभी धूप कभी छांव।
5: हाँ नहीं यह तो हो रहा है, अच्छा धूप, गर्मी है दिल्ली में गर्मी है। तो मुझे जो ठंडा नवंबर में चालू हुई है आपको लगता है?
6: जी अब हल्का हल्का तो ठंडा लग ही रहा है सुबह में और रात में।
5: हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। आपका रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ,
6: तो
5: आपको बताऊंगा कैसा आया रिजल्ट।
6: बिल्कुल, कब तक आने वाला है?
5: 26 तक आ जाएगा रिजल्ट, आता है हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरी।
6: भरोसा रखिए।
5: और बाकी सब?
6: जी जी बाकी सब ठीक है
5: और बढ़िया चलना चाहिए और क्या।
6: तो
5: हमको आज गाना सुना दीजिए।
6: बिल्कुल बता दीजिए।
5: फिल्म का नाम है याद नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला फिल्म छलिया 1960 आई थी।
6: ओके, और गाने की दो
5: गाना है दम दम दीवा दीवा मौसम दीवा दीवा फिर मैं तो गिरा हाय अल्लाह, ये वाला सॉन्ग है मुकेश कुमारी।
6: जी जी
5: तो ये उसको सुना दीजिएगा और फिर आपसे मंडे को मुलाकात
6: होगी। जी जी और गाने की
5: दो दीजिए। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ फिर तो मैं भूल ही रहा था। सबसे पहले आपका बात दम दम सिद्दी थी रानी हड़कुआ सबीना सब्बा सिद्दी थी हेना हजरा निशा सुकुनवा रोशनी कुमारी दिलीप राम मुकेश बरजू भास्कर दिवेंदर उमा शंकर समीर आलम गुलाम हुसैन और अपने लोग सुन रहे हैं तो सुनाना चाहता हूँ अख्तर ये अहमद अली गुड़िया परवीन। तो सबको सुना दीजिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके नमस्कार।
6: जी नमस्कार, रेडियो रमजान में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 असम में।
1: गाना सुनना है?
0: बिल्कुल, नाम बता दीजिए।
1: नाम
0: जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
1: साहिबा खातून कैथोलिया से बोल रही हूँ।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो मैलों से प्यारी है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको और रेडियो रमजान सुनने भी सभी श्रोता को।
0: जी जी, तो आप ठीक है?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी जी, हम भी ठीक है,
1: खाना खा लेंगे।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 FM।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
4: बहुत
5: स्वागत है आपका 90.4 FM में।
6: नमस्ते, कैसी हैं?
5: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: तो क्या हो रहा है अभी?
7: काम हो रहा है,
6: काम के काम।
5: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
7: अरिजीत सिंह का कलंक।
5: कौन सा?
7: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
5: हाँ हाँ है।
7: कलंक, कलंक गा के बताऊँ क्या?
5: बिल्कुल बता दीजिए।
7: लेकिन आवाज इससे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
5: कितनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है।
7: इसे दो लाइनें गा के बता रही
5: हूँ। बिल्कुल।

जी, काफी बहुत खूबसूरत गा रही हैं और बोल रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो तो अभी अब अपने काम में लगी हुई है। और गाना किसी को सुनवाएंगी भी? जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, बालवीर सुंदरपुर।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बहुत ही गाना अच्छे खेसारी का आवाज सुना दिया है, थावे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थावे वाला कोई भी खेसारी की आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशीष अजीत अंगारी।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं
2: बनबू।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: ना होता रो।
1: अरे एक करे जा, हम बरसी ना, खाली गर्जे वाला बादल ना होई, आ जदी हमारा के छोड़ के गईलू, तब बुझ ली हो।
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: होगा कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: चित्रगुप्त सिद्ध चालीसा प्रस्तुत करते हैं के सिंह के रिकॉर्ड में।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।